तारिक हलाल ने इस अजान को स्पॉन्सर करके सदकाए जारिया कमाया है। दुआ है कि इनके इस नेक फेल से इनकी दीन और दुनिया में भलाई हो। विजिट कीजिए तारिक हलाल .com।

0: तारिक हलाल ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए ऑन tarikhalal.com और घर बैठे ताजा मीठा हासिल कीजिए।
1: This is Laika Radio.

0: Keto food containers are recyclable, reusable and microwavable.
1: School ke liye, office ke liye, uni ke liye, Satco food containers.
0: The perfect food storage solution, Satco food containers.
2: Are we there yet?
3: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
4: Relax, I've booked the Uber already.
3: How? My roaming isn't even working yet.
4: I switched to Simsy before we left London.
3: Simsy? Since when are you the tech expert?
4: Since I decided I want a stress-free holiday.
5: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simsy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simsy, holiday travel simplified.
6: T's and C's apply.
7: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल
8: और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल.
9: यू मीन सफ्टल ट्रेवल?
8: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर.
9: एक बार आजमाई जरूर सफ्टल ट्रेवल.
7: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
9: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए.
10: कॉल सफ्टल ट्रेवल 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक ऑन 0161 250 1250. दैट्स 0161 250 1250.
11: Frankie Goes to Bollywood is back. Dive into a breathtakingly colourful journey of romance, epic songs, spectacular dancing with brand new songs by Bollywood hitmaker Hari Anand. This show-stopping musical celebrates ambition, transformation and the power of owning your own story. From the producers of Britain's Got Bhangra and Surinderella, Frankie Goes to Bollywood comes to the Birmingham Rep 10th to the 13th of June. For tickets and more info, click birmingham-rep.co.uk. Radio partner Laika Radio.
12: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
13: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
12: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
13: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
12: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
13: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
14: माँ को बोल कि जल्दी मच्छी लेकर आए.
15: हो अपनी माँ को बोलो मैं लेकर आऊंगा.
16: नाम परशुराम, अधर्म का करता हूँ काम तमाम.
14: अरे कहाँ हो तुम?
15: हो आनो आनो.
16: परिवार उसके लिए चारों धाम, बाहर वो है परशुराम.
13: Watch Mr. and Mrs. Parshuram Monday to Sunday at 7:30 PM only on Utsav Plus. Sky Channel 705, Virgin Media 803 and EE392.
17: Advertise here now. Call 0161 250 8222 or email sales@leicaradio.com.
18: LenFi means quicker and safe way to send money.
19: LenFi means low transaction fees and great exchange rates.
18: LenFi means £10 sign-up bonus on registration for transactions over £50. Just use the code LEICA.
19: So send money today to India, Pakistan or Bangladesh with LenFi. Download the LEMFI mobile app today.
20: LenFi is registered by the FCA. T's and C's. Apply.
21: जिसको सबकी खुशी का है ख्याल, क्या है उसके दिल का हाल? मिलिए अनुपमा से.
13: अनुपमा मंडे टू संडे एट 8:30 PM ओनली ऑन उत्सव प्लस. उत्सव प्लस, स्काई चैनल 705, वेजी मीडिया 803 एंड EE392.
20: प्रेजेंटेड बाय साउथ होल ट्रैवल, पावर्ड बाय टाटा टी प्रीमियम एंड वेल मैन एंड वेल वुमन बाय वाइटा बायोटिक्स.
17: No, you can advertise on this station, Leica Radio Greater Manchester, plus our other offerings, Leica Radio Greater London and Leica Gold Greater London. As a combined network, we can give you a competitive rate to spread your message to a wider audience. Call 0161 250

0: Laka.
1: Arevadi wa.
0: And Johnny, today's song is आंखों से तूने ये क्या कह दिया.
1: मुझे भूख लगी है.
0: दिल ये दीवाना धड़कने लगा.
1: आपको अच्छा सुना.
0: बारिश में हम यूं मिले इस तरह.
1: Ooh.
0: And something like this.
1: Yeah, easy though. I'm worried about the बारिश. ठंड लग जाएगी.
2: मैं मचलने लगा.
1: सच्ची बाबर सच्ची.
2: तुम जलने लगी. बूंद तन पे गिरी. जम चलने लगी. छा रहा है अजब सा नशा.
1: बाबर ये रात की बात थी.
3: Good morning, Donnie. Today's going is

0: All right, Priya, someone knows the words, innit? Sachi Saira Tubi.
1: Bonde tane pengi ri.
0: Oi.
1: Ham chalne lagi. Charaha hai ajab sa nasha.
0: Sharam karo yaar. Bache bude sun rahe hain.
2: Morning, Brasco. The song is from Amir Khan and Rani Mukherjee movie.
0: Yes.
2: आँखों से तूने क्या कह दिया
0: I love you
2: दिल ये दीवाना धड़कने लगा
0: Exciting
2: तन्हाई में हम मिले इस तरह
0: Oh, is there no more?
3: Today's gone eyes आँखों से तूने ये क्या कह दिया
0: Oh, you got it
4: Hi Brasco, what a song The song is आँखों से तूने ये क्या कह दिया
0: Oh, so many Alka Yagnits in the morning.
5: Oh.

0: मैनचेस्टर और ग्रेटर मैनचेस्टर में इस वक्त टेम्परेचर हो रहा है 14 डिग्री, जबकि ज्यादा से ज्यादा होगा 17 डिग्री, और मुस्तकिल बारिश धीरे धीरे होती रहेगी और मौसम ज्यादातर क्लाउडी रहेगा। कराची में 36 डिग्री टेम्परेचर, लाहौर में 34 डिग्री और दिल्ली में 29 डिग्री है।
1: स्पेशल रेट्स टू इंडिया, पाकिस्तान, दुबई, मालदीव्स, थाईलैंड, USA, कनाडा, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, कॉल Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0161 250 1250.
0: Well, जनाब गुड मॉर्निंग कहेंगे सबसे पहले हफ्ते का पहला मिड मॉर्निंग शो लेके आपकी खिदमत में हाजिर रिबन ताबिश, और शुक्रिया अदा करेंगे जोनी ब्रास्को का। जोनी ने हफ्ते का पहला शो आपके लिए पेश किया। And now my turn. Good morning.
1: Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, Greater Manchester, a new Asian sound for the northwest of England. 9:63 a.m. and 13:77 a.m. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world. Leica. Ibane Tabish, rolling out your favorite hits across the northwest. This is Leica Radio, Greater Manchester.

0: जी हाँ जी, आवाजों में और बातों में घिटपिट तो होगी क्योंकि मंडे का पहला काम का दिन होता है और पहला मंडे का हफ्ते का शो होता है, तो लिहाजा थोड़ा सा जरा सबर कीजिए, वार्म अप टाइम है।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: पूछे हैं जी, लड़कियां तो शहर की हों या गांव की हों, लड़कियां तो लड़कियां होती हैं, लेकिन लड़के बहरहाल शहरी बाबू होते हैं। जी हाँ जी, हाथ मिलाइए और शेक हैंड कीजिए, मुसाफा कीजिए, मुसाफा। मंडे मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और इस सॉन्ग को लगाने का कारण ये था कि आज हमारी डायरी के पन्ने पे इस शहर की लड़की का नाम लिखा है, शल्पा शेट्टी, और दूसरी लड़की का नाम लिखा है डिंपल कपाडिया। अब बताइए दोनों में से कौन सी शहर की लड़की आपको पसंद है? जी जनाब, प्रोग्राम का वार्म अप टाइम, बैक टू बैक हमने आपको कुछ मैशअप के सॉन्ग सुनवाए थे, कुछ नए हफ्ते के पहले दिन के प्रोग्राम की मुनासिबत से। और अब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं रब्बी जलील के बाबरकत नाम से, जो मेरे और आपके दिलों के भेद खूब जानता है। मंडे मॉर्निंग, सोमवार का दिन, हफ्ते के काम के आगाज का पहला दिन, और जून महीने का आज 8वां दिन, यानी 8 जून हो गया है। 8 जून को तारीख पैदाइश है दोनों की, शल्पा शेट्टी और डिंपल कपाडिया। अगर आप में से भी किसी की आज बर्थडे है या वेडिंग एनिवर्सरी है या कोई भी इवेंट, तो आप मुझे बता सकते हैं। आप तो मेरी नेचर जानते हैं, मैं तो किसी को बताऊंगा नहीं। तो बहरहाल जी, शुक्रिया तमाम साथियों दोस्तों का जो हमारे साथ हैं और मजीद हमारे साथ ही रहेंगे कोई पूरे एक बजे तक। ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। 07703403020 के नंबर पर प्रोग्राम में आज म्यूजिक बहुत आला होगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Right, जनाब, अब करेंसी के रेट आप तक पहुंचाएं। अमेरिकन डॉलर 1.33, इंडियन रुपीज में 126.51, बांग्लादेशी टका 166.38, पाकिस्तानी रुपीज 373.02, श्रीलंकन रुपीज 447.85 और अफगानी रुपीज 83.54 का है।
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Leica Radio.
1: Known as Asian Sound Radio. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: Right, जनाब, holiday में break के लिए आप जा सकते हैं साहिल समंदर पर यूरोप की किसी भी कंट्री में, और आपको मिलेंगे includes कहते हैं flights और hotels भी होंगे, लेकिन terms conditions apply होंगी। 40 वर्ष हो गए इनको आपकी खिदमत करते करते। Southall Travel 0208574840.
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. This is Leica Radio News Update.
0: अब मिड मॉर्निंग शो में उर्दू की खास खास हेडलाइंस। फिलिपाइन में 8.2 शिद्दत का जलजला, सुनामी वार्निंग जारी। नेतन्याहू के पास ईरान डील कबूल करने के अलावा कोई चारा नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। ईरान का इसराइल पर एक और मिसाइल हमला, कई इमारतों को नुकसान पहुंच गया। सऊदी अरब में अलखरज में हमले का अलर्ट जारी, बाद में खतरा टलने का ऐलान। चीनी सदर शुमाली कोरिया का दौरा कर रहे हैं। ईरान और तेहरान और तबरेज, इस्फहान और करज में धमाकों की आवाजें। भारत में हामला खातून को दिए गए गिजाई पैकेट से मुर्दा सांप बरामद। और यमनी हुसियों का इसराइली मेरीटाइम नेविगेशन पर मुकम्मल पाबंदी का ऐलान। कतरी वजीर आजम की ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराकची से टेलीफोनिक गुफ्तगू। और इस्माइल बकाई ने कहा कि अमरीका हालिया जंगबंदी के खिलाफ वर्जियों का बराह रास्त जिम्मेदार है। तो ये तो थी उर्दू की चंद खास खास हेडलाइंस। मजीद अपडेट जानने के लिए सुनते रहिए लाइक रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर।
1: द The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
0: जी हाँ, और अब सोने का भाव हमारे यहाँ यूके में आज 1 ग्राम गोल्ड की कीमत 104.37 यानी 104.37 पेनिया और पाकिस्तानी रुपीस में 24 कैरेट 1 ग्राम सोने का भाव आज है 39,000 रुपए 39,000 रुपीस पाकिस्तानी।
1: गोल्ड रेट इज ब्रॉट टू यू बाय हार्टी हैंक्स, यूके प्रीमियर डिजिटल मीडिया एजेंसी हेल्पिंग कंपनीज एक्सपैंड देयर डिजिटल फुटप्रिंट। विजिट hartihanks.com।
2: Leica Radio.
3: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
4: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
5: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
4: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
5: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
4: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
5: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
4: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
6: Har case mein kam se kam ek witness to hota hi hai. Murderer khud.
7: Kolkata mein hamare gharon ke aas paas ye sab ho raha hai.
8: I'm Dr. Sandeep Chakraborty. I'm a psychiatrist.
9: One more gruesome murder.
10: Dono victims 20s mein. Dono female. He's not going to stop. There are many more in danger.
11: Karishma Kapoor in and as Brown, now streaming on Hindi Z5.
12: Need a car the halal way? Look no further. Halal Car Finance is now available in the UK with Ayan. No interest, no hidden fees, no compromise. Apply today at ayan.co.uk. Ayan, drive with Baraka.
13: Subject to status checks. Representative APR 10.9%. This rate reflects Ayan's rental charges. We do not charge interest.
14: Caratino Better Ghee. The healthier, low price, cholesterol free, butter ghee alternative. Caratino Better Ghee. Available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
1: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
15: अपने कारोबार को अक्रॉस ग्रेटर मैनचेस्टर पहुंचाना चाहते हैं तो इसे लाइक रेडियो मैनचेस्टर पर जो साउथ एशियन कम्युनिटी के सीने में दिल बन के धड़कता है एडवर्टाइज करके सैकड़ों लिसनर्स तक रोजाना पहुंचाइए। लाइक रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर, ईमेल sales@leicamedia.co.uk और कॉल नंबर इज 0161250822, दैट इज 0161250822। लाइक रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर, आपकी कम्युनिटी, आपका स्टेशन।
1: A Leica Radio Classic plays now. Now.
16: बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर

मैं तो रोजाना कमरे में बंद रहता हूँ, ये रोजाना डेली हफ्ते के पांचों दिन मंडे टू फ्राइडे। बॉबी क्या घूमेगा और क्या खोएगा, यहाँ तो ताबिश खोने आता है अपने आप को। दिलपम कपाड़िया और शिल्पा शेट्टी, इन दोनों को कौन कौन पसंद करता है जरा मुझे लिख के बताए ना, भेजे ना जरा खत मुझे भेजे।

0: deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Like a radio.
1: T's and C's apply hongi, lekin bahrhal. मेरे ख्याल है अब मैं उन लोगों के नाम ले लूं कि बात इससे पहले कि बहुत आगे तक पहुंच जाए कि कौन कौन मुझे कहां कहां सुन रहा है, तो थोड़े से नाम अभी शामिल कर लेते हैं। बाकी नाम और आपके पैगाम को बाद में शामिल करते रहेंगे आपकी फरमाइशों के साथ साथ। ओल्डम में शिराज हमारे साथ हैं। शिराज भाई पूरे दिन ड्राइव करेंगे और पूरे दिन मेरा साथ निभाएंगे। पूरे दिन कैसे भाई? 1 बजे तो मैं चला जाऊंगा शिराज भाई। वॉरिंगटन में हमारे साथ होती है हमारी बहन फरजाना, फरजाना नसीब खुशामदीद, और शल्पा शेट्टी के बहुत बड़े फेवरेट हीरोइन है नवीद की। नवीद अशरफ ने कहा ठीक है नवीद भाई, तो भेजिए उनकी पसंद के गाने। उज्मा तबस्सुम हमारे साथ हैं, वालेकुम सलाम उज्मा। वल्ली भाई आज प्रेस्टन में हमारे साथ हैं। जाहिद अब्बास भाई, शकील भाई होते हैं वहां पे, साजिदा सुमर होती है, और खुशबू शहजाद हमारे साथ होते हैं। शहजाद वालेकुम सलाम के साथ हमेशा लिखते हैं। ताबिश भाई कैसे हैं यार? इतनी मोहब्बत से आप पूछते हैं कि मैं खुद सोचता हूँ कि यार मैं कैसा हूँ, मुझे तो खुद पता नहीं होता। और उमर हमारे साथ हैं, उमर वालेकुम सलाम। रुखसाना अफजल हमारे साथ हैं रोजडेल में, गजाला जबी होती है वहां पे रोजाना। बरी में अमन हमारे साथ हैं, और चंदा आसिया जी हमारे साथ हैं। आसिया वालेकुम सलाम रोजडेल में ही, और रोजडेल में हमारे साथ होती है लैला।
2: Formerly known as Asian Sound Radio, this is Leica Radio, Greater Manchester.
1: और शिल्पा शेट्टी का वो गीत, वो फिल्म जो मैंने सन 2000 में वॉशिंगटन में देखी थी, यकीन करें हाँ। और ये फरमाइश आई है कराची से, फरीद भाई की दिल की धड़कन।

0: रहते हो
1: रहते हो
2: सच
1: दिल की धड़कन में रहना, पता नहीं ये साइंसी बात है या गैर साइंसी। मत पूछ के मेरा कारोबार क्या है, मत पूछ के मेरा कारोबार क्या है, मोहब्बत की दुकान है नफरत के बाजार में। Oh my God, लाइट गई भी है और फंका जल रहे हैं, हाथ वाला फंका। फरीद भाई I'm so sorry यार, कोई बात नहीं, हम है ना आपकी दिल की धड़कन में।
0: बस तुम रहते हो।
3: ये है लाइका रेडियो, CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage, 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, like our radio. Radio.
4: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan. Locate, design, manage, cater.
5: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल।
6: यू मीन सॉफ्टल ट्रेवल?
5: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर।
6: एक बार आजमाइए जरूर सॉफ्टल ट्रेवल।
5: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
6: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए।
7: कॉल सॉफ्टल ट्रेवल 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक ऑन 0161-250-1250. दैट्स 0161-250-1250.
8: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
9: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
8: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
9: And you didn't pay those massive roaming charges?
8: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
10: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
11: Location.
12: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
11: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
12: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
11: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
12: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
11: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
12: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
11: high appreciation
12: in Dubai.
3: Ibanez Habish on Leica Radio, Greater Manchester.
1: Right, जनाब, पूरा घंटा भर हो गया और इससे पहले कि प्रोग्राम का पहला हिस्सा समाप्त हो जाए, पाकिस्तानी क्लासिक सॉन्ग की बारी आ गई, अखलाक अहमद और ए नैयल। रोजल वालों में से एक नाम लेना भूल गया था मैं, यासिर। नदीम और शबनम की एक 80s के जमाने की मूवी थी, उसका नाम था उमंग, और ये गाना हम नाम करेंगे गजाला बहन के। गजाला जमी आपके नाम।

0: कुछ समझ में तो आ जाएगा। पहेली की तलाश जारी है और मैं आज मुश्किल पहेली नहीं पूछूंगा, रोजाना की तरह आसान सी पहेली पूछूंगा। नैया रनूर और अखलाक अहमद की आवाज।
1: दिस इज लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर, formerly known as Asian Sound Radio।
0: जी हाँ जी, फरजाना नसीब और नवीद अशरफ ने हमें बताया कि शिल्पा शेट्टी की पहली फिल्म थी बाजी। बहुत पढ़े हैं चेहरे।

0: होले होले और कुछ चोरी चोरी। गुड मॉर्निंग अदनान, बहुत शुक्रिया तुम्हारा साथ निभाने का और वो तमाम साथी जो बड़ी दिलचस्पी के साथ प्रोग्राम में आप साथ निभाएंगे। और शल्पा शेट्टी और डिंपल कपाड़िया हमारे साथ होंगी दोपहर के पूरे एक बजे तक।
1: The Leica Radio Network, the perfect soundtrack for a British summer heatwave.

0: आँखों वाली,
1: सागर जैसी आँखों वाली, उसका नाम है डिंपल कपाड़िया। एक बार फिर से खुशामदीद एंड गुड मॉर्निंग, हैप्पी मंडे।
2: Leica Radio Network, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands, with the UK's biggest Asian hits. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: Currency ke rate duniya bhar ke mukhtalif mumalik mein aaj Britanvi pound ki qeemat American dollar 1.33, Indian rupees mein 126 rupees 51 paise, Pakistani rupees 373 rupees 2 paisa, बांग्लादेशी टका 166.38 पैसे, श्रीलंकन रुपीज 447.85 रुपए और अफगानी रुपीज 83.54 रुपए का।
2: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. The latest gold rate is brought to you by Hearty Hang. Your digital growth partner.
1: Latest gold rate आज का हमारे यहाँ UK में 1 ग्राम गोल्ड की कीमत 104.37 यानी 104.37 पाउंड पर ग्राम और पाकिस्तानी रुपीस में 24 कैरेट 1 ग्राम गोल्ड की कीमत आज है 39,039 रुपए।
2: Gold rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com. This is Leica Radio.

0: जी हाँ जी, अब पॉडकास्ट की बात बता दें, लाइक एक्स्ट्रा पे आप हमारे चैनल पे जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और देखें और जांचें कि हर हफ्ते हमारे पॉडकास्ट पे जो है कोई ना कोई मौजू पे बात हो रही होती है। इस पर तवा जो बात हो रही है वो है लिव इन रिलेशनशिप और इसे होस्ट कर रही है रेडियो वाली लाइक एक्स्ट्रा
1: रेडियो। C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India और Dubai में houseful shows के बाद अब पहली बार London में देखिए आशुतोष राणा को as रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में। रामायण की undiscovered stories live on stage 9 से 12 जुलाई Eventim Apollo Hammersmith। Hamare Ram, book your tickets now, visit www.eventimapollo.co.uk। exclusive radio partner like our radio।
2: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
3: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
2: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
3: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
2: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
3: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
2: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCNPRA.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything, and this one is a villa.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube, prime location,
4: high appreciation
5: in Dubai.
1: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
6: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइक आर रेडियो सेल्स ऑन 0161-250-8222 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: वर्ड जनाब, इंडिया अपने प्यारों को रकम पहुंचाने के लिए SBI वालों का पैगाम और आज का रेट दे रहे हैं ये इंडियन रुपीस ब्रिटिश पाउंड के बदले में 127 रुपए और कहते हैं कि अगर आप ऑनलाइन या इनके किसी ब्रांच में जाएं यह बेहतरीन तरीका है बेहतरीन रेट लेने के लिए योनो एसबीआई मोबाइल ऐप यूके के जरिए।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स बिजनेस बैंकिंग बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीस एंड सीज अप्लाई। वी आर लाइक अ रेडियो,
7: लाइक अ रेडियो,
1: ग्रेटर मैनचेस्टर, लाइक अ रेडियो।
0: Yes, we are in Manchester. और जनाब बूझो तो जाने रिडल ऑफ द डे। और बहुत देर हो गई, मैंने हालांकि लिख के एक पर्चे में रखी थी लेकिन वही भाई तीन दफा कमरे में आ जाए हैं, न जाने क्यों क्या कहने आते देखने आते हैं मैं स्टूडियो में क्या कर रहा है। अच्छा जी, आज का रिडल, आज की पहली बड़ी आसान सी, मैंने कहा था बहुत ही आसान सी होगी, बस आंखें आप यूं बंद करेंगे और यूं जवाब आ जाएगा। वैसे भी गर्मियों के दिन है, खाने पीने की बातें होनी चाहिए ना। कहते हैं साहब, हरा दरवाजा लाल मकान, हरा दरवाजा लाल मकान, अंदर बैठा काला मेहमान।
1: The Pakistani hit of the hour is brought to you by the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.
0: और अब गुलाम अब्बास की आवाज का बहुत ही खूबसूरत और पुराना 80s के जमाने का पाकिस्तानी सॉन्ग। जी हाँ, आज की पहली ये है कि हरा दरवाजा लाल मकान, अंदर बैठा काला मेहमान। 07703403020 हमारा वो नंबर है कि जिसपे आप आते हैं और अपने खतूत मुझे भेजते हैं लिख के और मेरी पहली के जवाबात भेजते हैं और फरमाइशें भी करते हैं मुझसे, फरमाइशें जो कि मैं अक्सर पूरी नहीं करता।

का रेडियो मिल जाता है यार मगर प्यार नहीं मिलता। पाकिस्तानी सॉन्ग नाम करेंगे शमीम बानो बेगानी आपके, और इसी गाने को नाम करेंगे आसिया जी हमारे साथ हैं रोजाना की तरह। और जनाब हमारे रिडल के जवाब इतने जहीन और स्मार्ट है मेरे सुनने वाले, यूं करके यूं फौरन जवाब देते हैं। शुक्रिया आमिरा वाइन, आपने फरमाइश की है हमसे, लेकिन फरमाइशी प्रोग्राम में बहुत कम करता हूँ, लेकिन आप कोशिश जारी रखिए, कोई बात नहीं। हम तो इस दावे के साथ अपना शो करते हैं कि हमारे पसंद के गीत और हमारी प्लेलिस्ट आपको यकीनन पसंद आती होगी। अच्छा जी, हरा दरवाजा लाल मकान, अंदर बैठा काला मेहमान। सुमेरा बहुत शुक्रिया, आपने हमें जवाब लिखा। और नौशाद अली भाई, आपने भी हमें जवाब लिखा, बेहद शुक्रिया। लाहौर से ज्वाइन किया है ताबीर ने, ताबीर वालेकुम सलाम, जीती रहिए। इमरान राणा, आपने भी हमें जवाब लिखा, आपका जवाब भी हमने नोट किया। और चंदा ने ज्वाइन किया है, कहती है वालेकुम सलाम जी। खालिद लंगड़ियाल भाई, वालेकुम सलाम। एसपी सज्जाद पहलवान, लतीफ भाई वोली रेंज में, साजिदा सुमरू। और नूर हमारे साथ हैं जी, रोजाना होती हैं, अब भी होंगी शाम तलक। सेंट एलन्स से। और ओल्डम से शिराज भाई, ये गाना शायद आप कह रहे थे, डिंपल कपाडिया और अनिल कपूर गालिबन है ना, इसी गाने को गुनगुना रहे थे ना आप। जी हाँ साथी दोस्तों, आपको बता दें कि आज हमारे प्रोग्राम में ये हफ्ते का पहला मिड मॉर्निंग शो होता है, और हमारी कोशिश होती है कि आपको भरपूर तवानाई फराहम की जाए। आज हमारी डायरी के पन्ने पे दो नाम लिखे हैं, शल्पा शेट्टी और डिंपल कपाडिया।

0: जिंदगी में अगर किसी का साथ वाकई ऐसा हो ना कि जो आप चाहते हो, तो फिर दिल चाहता है कि दुनिया में दोबारा आओ और फिर वैसा ही हो। शिराज भाई बहुत इंजॉय कर रहे हैं आप इस गाने को। आपने कहा कि आपकी शादी में ये, उसकी वीडियो में ये गाना था, तो भाई क्या बात है। Like a radio. 80s, mid 90s के जमाने के ये सॉन्ग्स और ये गाने और ये फिल्में, ये मुसीकी अब दोबारा कहाँ मिलती है, आप अंदाजा लगाइए। खालिद महमूद भाई नेल्सन में बहुत इंजॉय कर रहे हैं। किशोर के गाने आपको बहुत पसंद हैं, मेरी तरह, मेरी तरह, कौन सा गाना है वो? अच्छा जी, ज्वाइन किया जमशेद चौधरी भाई आपने, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ साथ रहिएगा। और खुशबू ने हमें जवाब दिया गुड मॉर्निंग का, प्रेस्टन से। और आसिया कहती हैं रोजाना की तरह आज भी ताबिश, आज मार्क्स की अगर बात आई तो हम आपको फिर मार्क्स देंगे, आज मार्क्स की बात नहीं होगी। हो सकता है हो, लेकिन बहरहाल जी हमारे साथ है मैनचेस्टर में रुखसार। रुखसार बहुत देर में आई, आप कहाँ थी इतने दिन से? अच्छा जी, इंतजार है रॉबिन भाई का। रॉबिन भाई असल में अभी बहुत सुबह है न्यूयॉर्क में, और वो हफ्ते में दो दिन घर से काम करते हैं और हफ्ते में दो दिन वो खुद जाते हैं न्यूयॉर्क से, काफी दूर ट्राम में बैठ के सबवे में। क्या बात है। अच्छा जी, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की लास्ट ब्रेक हम ले रहे हैं, उसके बाद वापिस आके अब तलाश ये है कि शिल्पा शेट्टी का कोई गाना मुझे नहीं मिल रहा।
1: ये है लाइका रेडियो।
2: Cinderella is back for 2026. Beck Theatre Hayes, 22nd and 23rd of July. Arts Depot Barnet, 17th and 18th of October. Theatre Royal Stratford East, 20th to the 31st of October. With smash hit music by the hitmaker PBN, Cinderella is guaranteed dizzy panto fun for all the family. And with tickets starting from £15, click riffgotheatre.com and be sure to book before the clock strikes midnight. Cinderella goes back into the Bollywoods. Radio partner Leica Radio.
3: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल।
4: You mean Subtle Travel?
3: Yes, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर।
4: एक बार आजमाइए जरूर Subtle Travel।
3: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
4: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए।
5: Call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0161 250 1250. That's 0161 250 1250.
6: हर केस में कम से कम एक विटनेस तो होता ही है, मर्डरर खुद।
7: कोलकाता में हमारे घरों के आसपास ये सब हो रहा है। I'm Dr. संदीप चक्रवर्ती, owner psychiatrist.
8: One more gruesome murder.
6: दोनों विक्टिम्स 20s में, दोनों फीमेल। He's not going to stop. There are many more in danger.
9: Karishma Kapoor in and as Brown, now streaming on Hindi Z5.
10: Step into the spotlight and get modeling and casting opportunities
11: with Miss, Mrs. and Mr. Asiana 2026.
10: Brought to you by Asiana in association with ZTV and Leica Radio.
11: Get national exposure and take your first step into the world of glamour.
10: The North England Heats will be taking place at the luxurious Park Hall Resort and Spa in Preston, Lancashire.
11: On Sunday, July 5th. Apply now at missasiana.co.uk.
12: Location, location, location.
13: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
12: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
13: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
12: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
13: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
12: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
13: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Daniel. Prime location.
12: High appreciation.
13: In Dubai.
14: Ibanet Tabish on the Mid Morning Show.
15: Leica Radio.

0: और चैन से वो सोते हैं। कुमार सानू और साधना सरगम, फिल्म का नाम गैम्बलर, शिल्पा शेट्टी। आमिरा जी हमसे कहती हैं, आमिरा वायन किताब है, ये सॉन्ग बस शादी से पहले ही अच्छे लगते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं,
1: मेरी नींद गई।
0: अच्छे सॉन्ग अच्छे गाने शादी से पहले भी अच्छे लगते हैं और शादी के बाद भी अच्छे लगते हैं। क्या ख्याल है आप सबका? सही कहा ना ताविश ने। और अब दूसरा सॉन्ग होगा डिंपल कबाड़िया जी का, और वो सॉन्ग हमें लेके जाएगा 12 बजे की खबरों की जानिब। उसके बाद बैक टू बैक दुकानें और होंगे, और गजल भी आज डिंपल कबाड़िया ही की, उनकी उन्हीं पे फिल्म आएगी। गजल को हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे, आपको पता होगा कौन सी गजल है वो।
2: We are the Leica Radio Network, now with 3 Asian radio stations in the UK.

0: सावन की मोहब्बत बादल से,
1: पैरों को मोहब्बत पायल से,
0: और पैरों को मोहब्बत पायल से, क्या शायरी है, क्या शब्द है साहब। कहते हैं उसको मालूम है कि उसके बिन हम टूट जाते हैं, उसको मालूम है कि उसके बिन हम टूट जाते हैं, फिर क्यों वो आजमाता है, फिर वो क्यों आजमाता है हमसे बिछड़ बिछड़ कर। अच्छा जी, ये थी शिल्पा शेट्टी, और इसके बाद अब गजल के वक्त में गजल होगी डिंपल कपाड़िया जी की। जी हाँ, और वो भी आपकी पसंद की।
2: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर्ड बाय कोका नूडल्स, गुडनेस इन एवरी बाइट, ट्राई इट टुडे, अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर।
3: ये है
4: लाइका रेडियो,
5: द वॉइस दैट टर्न्ड लव, हार्टब्रेक एंड मेमोरीज इनटू टाइमलेस सॉन्ग्स। Pepe's presents
3: Atif Aslam live in the UK.
6: Dil diya galla karange na.
5: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
3: Book your tickets now at AXS.
5: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
3: Exclusive radio partner Leica Radio.
7: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
8: ट्रांसफर मनी होम एंड टर्न every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
9: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
8: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
9: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
8: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
9: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
8: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
10: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल
11: और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल।
12: You mean Subtle Travel?
11: Yes, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर।
12: एक बार आजमाइए जरूर Subtle Travel।
10: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
12: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए।
13: Call Subtle Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0161-250-1250. That's 0161-250-1250.
14: Khakra Crunch, Bhakri Munch, Chikki Sweet, Papad Beet, Pickles Heat. Ye hai Jaimin Foods ka Vibe Check.
15: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra, Namkeen, Papad, Pickles, Chikki, Pot Meals and much more.
14: Jaimin Foods, Desi Cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
16: Your guzzle hit plays now on Leica Radio Greater Manchester.

0: आजू भी है
1: भूपिंदर सिंह और आशा भोसले जी की आवाज
0: को तेरा,
1: किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है।
2: Like a radio.
1: आज सुबह ही सुबह ये गजल हमें लिखवा दी थी और नोट करा दी थी खालिद महमूद ने। खालिद महमूद हमें सुनते हैं नेल्सन में रोजाना पाबंदी के साथ, और यही गजल उन तमाम लोगों के नाम जो इस वक्त मेरा प्रोग्राम बड़े दिल से सुन रहे हैं, दिल से। भाई सुनते तो सभी हैं, लेकिन किसी की बात कोई दिल से सुने ये बड़ी बात है ना। रॉबिन भाई उठ गए हैं न्यूयॉर्क में और पहली मरतबा हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं हमारे छोटे भाई खालिक। जी हाँ, खालिक हमें सुन रहे हैं कराची में, और नुजैद उनकी बेगम हमारा प्रोग्राम सुन रही हैं, और शिल्पा शेट्टी के दो गाने उन्होंने हमें नोट कराए। थोड़ी सी देर में हम उनकी पसंद के गाने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। कहते हैं इंतजार बस वही करता है, इंतजार बस वही करता है जिसको किसी से सच्ची मोहब्बत होती हो। और कौन कहता है वक्त बहुत तेज गुजरता है, मैं कहता हूँ रोज आजम में कहता हूँ। कौन कहता है वक्त गुजरता है बहुत तेज रोज, तुम कभी किसी का इंतजार करके तो देखो।
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में आज बरतानवी पाउंड की कीमत अमेरिकन डॉलर 1.33 1.33 जबकि इंडियन रुपीज में 126 पाउंड 126 रुपीज 51 पैसा और पाकिस्तानी रुपीज में 373 रुपए 2 पैसे, बांग्लादेशी टका 166 टका 38 पैसे, श्रीलंकन रुपीज 447 रुपए 86 पैसे और अफगानी रुपीज 83 रुपए 54 पैसे।
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is LIKA Radio, Greater Manchester. Formerly known as Asian Sound Radio.
3: LIKA Radio.
2: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
1: Right, जी, holiday break की बात कर लें। Southall Travel वाले 40 वर्ष से आपकी खिदमत कर रहे हैं और ये कहते हैं कि इस खुशी में ये खास तौर पे इन्होंने इंक्लूड किया है फ्लाइट्स और होटल्स, मगर टीज एंड सीज अप्लाई के साथ साथ, और बहुत सारी यूरोप की कंट्रीज में इन्होंने बहुत अच्छे पैकेजेस निकाले हुए। अगर आप चाहें तो इन्हें कॉल कर सकते हैं। अभी इनका नंबर है 0208-5748-410.
2: Breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is LIKA Radio.
1: हाँ जी, अब सोने का भाव हमारे यहाँ यूके में 1 ग्राम गोल्ड की कीमत आज 104 पाउंड 37 पेंस जबकि पाकिस्तानी रुपीस में 24 कैरेट 1 ग्राम गोल्ड की कीमत 39,000।
2: गोल्ड रेट इज ब्रॉट टू यू बाय हार्टी हैंक्स, यूके प्रीमियर डिजिटल मीडिया एजेंसी, हेल्पिंग कंपनीज एक्सपैंड देयर डिजिटल फुटप्रिंट। विजिट hartyhanks.com.
3: LIKA
2: Radio. This is LIKA Radio.
3: LIKA Radio.
2: Greater Manchester.

0: लेगा। महाराजा टूर्स ला रहे हैं कैप्टिवेटिंग चाइना 2026, शंघाई, बीजिंग, शान और चेंगडू का अनफॉरगेटेबल सफर, ग्रेट वॉल, टेराकोटा वॉरियर्स, हाई स्पीड ट्रेन्स और एडोरेबल पांडास, फ्लाइट्स, होटल्स, इंडियन खाना और गाइडेड टूर्स सब इंक्लूडेड फ्रॉम £3,299 पर पर्सन। विजिट maharajatours.co.uk या कॉल 07956154846।
1: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल
2: और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल।
3: यू मीन सॉफ्टल ट्रेवल?
2: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर।
4: एक बार आजमाइए जरूर सॉफ्टल ट्रेवल।
5: शायद तो दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
6: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए।
7: कॉल सॉफ्टल ट्रेवल 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक ऑन 0161 250 1250। दैट्स 0161 250 1250।
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
8: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
9: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Daniel. Prime location,
8: high appreciation
9: in Dubai.
10: हर केस में कम से कम एक विटनेस तो होता ही है, मर्डरर खुद।
11: कोलकाता में हमारे घरों के आसपास ये सब हो रहा है। I'm Dr. Sandeep Chakraborty, I'm a psychiatrist.
12: One more gruesome murder.
10: दोनों विक्टिम्स 20s में, दोनों फीमेल। Not going to stop. There are many more in danger.
13: Karishma Kapoor in and as Brown, now streaming on Hindi Z5.
14: Need a car the halal way? Look no further. Halal Car Finance is now available in the UK with Ayan. No interest, no hidden fees, no compromise. Apply today at ayan.co.uk. Ayan, drive with Baraka. Subject to status checks. Representative APR 10.9%. This rate reflects Ayan's rental charges. We do not charge interest.
15: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Advertise your service here. 0161 250 822. Leica Radio, Greater Manchester.
16: Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7 a.m. Saturdays and Sundays. Leica Gold in London, the Midlands and Manchester.
17: All right, Janab, welcome back. Aur abhi ek gana do logon ne mujhe likhwaya tha, do logon ne.

0: पे मेरे हम सफर अलका याग्निक और विनोद राठौर ताबीर, ये सॉन्ग आपने हमें याद दिलाया और इसी सॉन्ग को हमें याद दिलाया था कराची से खालिक ने। गुड आफ्टरनून, दोपहर का वक्त हो गया और नवीद अशरफ ने कहा ताबिश भाई असल में मैं मेरा नाश्ता और मेरा खाना अब एक साथ ही होगा, लिवरपूल से चला हूँ मैं और अब सेंट हैलेंड आया हूँ और अब मजीद आपका साथ होगा यकीनन मेरा और आपका साथ कोई 25 मिनट का। लाइक रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर, लाइक रेडियो ग्रेटर लंदन, लाइक रेडियो मिडलैंड एंड लाइक रेडियो गोवा। 24 घंटे हफ्ते के सातों दिन लहराती बलखाती आवाज हवाओं के दोष पे आपकी समातों में रस घोलती है और मैं हूं आपका मेजबान, मुझे कहते हैं अपने ताबिश, कहते हैं तशखीस बजा है कि मुझे इश्क हुआ है, ये तशखीस बजा है कि मुझे इश्क हुआ है और नुस्खे में लिखो, नुस्खे में नुस्खे में लिखो, हाँ जी नुस्खा, नुस्खे में लिखो उनसे मुलाकात मुसलसल। ये आजिम ही हो सकता है, वादा तो मुलाकात का करता है वो हमसे, वादा तो मुलाकात का करता है वो हमसे, इत्तिफाक से उस रोज उसे फुर्सत नहीं मिली।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: आज ये SBI वालों को एक बार फिर से पैगाम, इंडिया अपने प्यारों को रकम पहुंचाने के लिए तीन जराए देते हैं। कहते हैं कि पहला जरिया इनकी किसी आप ब्रांच में जा सकते हैं, बरतानिया भर में इनकी मुख्तलिफ ब्रांचेज हैं, या फिर ऑनलाइन या फिर इनकी मोबाइल ऐप को आप डाउनलोड कर लें अपने मोबाइल में, योनो SBI मोबाइल ऐप के जरिए। आज का रेट 127 रुपए दे रहे हैं ये इंडियन रुपीज में।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking.

0: buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
1: Like a radio. वो क्या खूब कहा था जॉन एलिया ने कि वो एक शख्स जो कम कम मयसर है हमको, वो एक शख्स जो कम कम मयसर है हमको, आरजू है किसी रोज वो सारा मिल जाए। हाय जॉन, जॉन एलिया। वो एक शख्स जो कम कम मयसर है हमको, आरजू है किसी रोज वो सारा का सारा मिल जाए। और उससे कहना मुलाकात अधूरी थी वो, उससे कहना मुलाकात अधूरी थी वो, और उससे कहना कभी आकर दोबारा मिल जाए।
0: The Pakistani Hit of the Hour is brought to you by the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.
1: तो उससे कहना कभी आकर वो दोबारा मिल जाए। सज्जाद अली का सॉन्ग बहुत दिनों से आपने और मैंने इसे प्ले नहीं किया होगा, है ना?

जी सायरा जी बहुत शुक्रिया, जीती रहिए, आपके पति, आपके पति परमेश्वर, आपके हबी जीते रहे। नासिर भाई हैप्पी बर्थडे टू यू फ्रॉम लाइक रेडियो फ्रॉम ताबिश। और ये प्यारा सा खूबसूरत नगमा आप दोनों के नाम।

0: This is Rabina Khan with The Magazine Show. Like a Radio.
1: Like a Radio. Program ke first two songs aapne sune back to back. So photo kahe ya photo kahe. Kyunki jab Punjabi hai to photo bhi keh sakte hain. So anyway, beautiful track tha. Umeed karti hoon aapko acha laga hoga. करण सैम भाई की आवाज थी और लुका छुपी फिल्म का नाम था और जो पहला गीत था वो तो मुझे बहुत ही पसंद आया इसीलिए मैंने आपके लिए प्ले किया और वो था जी हीर आसमानी वही जो एक आइडिया है ना आसमान पे सारा कुछ तय होता है तो वो फिर होता ही है होकर ही रहता है सो एनीवे दो बैक टू बैक सॉन्ग्स आपके लिए प्ले किए अभी बहुत सी अच्छी प्लेलिस्ट है आपसे बातें होंगी और आज के मंडे है तो मंडे को होता है थर्ड एंड जो फाइनल आवर में एक शॉर्ट स्टोरी और इससे पहले सेकेंड आवर में खबर पर नजर और ऑल टुगेदर पूरे प्रोग्राम में बहुत सी बातें बहुत से गीत और खबरें और आपके मैसेजेस यस ऑफ कोर्स 07703403020 पर आपके टेक्स्ट मैसेजेस मुझे मिलते हैं जिनको मैं प्रोग्राम में शामिल करूंगी और आज की तारीख के हवाले से आज के इंटरनेशनल कैलेंडर पर आज क्या चीज जो है जरा हाईलाइटेड है उस पर नजर डाल लेते हैं नेशनल बेस्ट फ्रेंड्स डे है आज इसको मैं क्या एक्सप्लेन करूं हर बंदा इसको जानता है कि कितना इम्पॉर्टेंट है बाज़ लोग कहते हैं सेहत ज़रूरी है और बाज़ लोग कहते हैं ऑब्वियसली सेहत तो सबसे पहले ही आती है और उतने ही ज़रूरी फ्रेंड्स भी हैं एक वक्त आता है जब आपको इवन मेडिकली भी साइकोलॉजिकली भी कहा जाता है कि आपको अपने दोस्तों के साथ रहना चाहिए कि दोस्त ही आपकी मेडिसिन होते हैं इसी नोट पर एक ब्यूटीफुल ट्रैक की तरफ लेके चलती हूँ आपको

बने और सागर की आवाजें मिस्टर मिसेस माही 2024 की फिल्म से इस गीत को लिया हमने. तो है तो

0: तारिक हलाल। नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में तारिक हलाल फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी पाने के लिए आज ही राब्ता कीजिए tarikhalal.com।
1: 7 stations, 1 podcast, 1 mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0161 250 822 or sales at leicamedia.co.uk.
2: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

0: अब आज आप सुन रहे थे सुनिधि चौहान की एक खिलाड़ी एक हसीना, और ये रीमिक्स था फ्रॉम द फिल्म जो कि रिलीज हुई थी 2005 में.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: करेंसी एक्सचेंज रेट आपको बता दें, वन पाउंड के एक्सचेंज में आपको यूएस डॉलर मिलेंगे 1.33, इंडियन 126.51 रुपीस, पाकिस्तानी 373.02, बांग्लादेशी 166.38 और श्रीलंकन 447.85, अफगानी 83.54.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is the LIKA Radio Network across London, Manchester and the Midlands. A LIKA Radio Classic plays now.
0: किशोर कुमार मन्ना डे की आवाजें, फिल्म का नाम क्या बताऊं? शोले से लपकते नजर आते हैं. सो 1975 से ये गीत, ये दोस्ती, ऐसा ही कुछ है ना. दोस्ती का डे भी है ना इंटरनेशनली.

0: इंटरनेशनली फ्रेंडशिप डे है आज. बेस्ट डे, बेस्ट फ्रेंड्स. एक्चुअली बहुत से फ्रेंड्स होते हैं लेकिन कोई ना कोई बेस्ट तो फिर उनमें से होता है. उनके नाम
1: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. 28 साल का भरोसा, हर साल हजारों happy travelers. इसलिए families के लिए Star Tours experience अलग होता है. Visit startours.co.uk.

बड़ी खूबसूरत और बहुत ही अच्छा म्यूजिक इसमें, अमित त्रिदेव, छोटे खान एंड अकुंचा सेठी। The latest gold rate is brought to you by Hearty.

0: ब्यूटीफुल ट्रैक कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजें, जैसा गीत है आज हमें मालूम हुआ वैसा ही फिल्म का नाम भी है। दसो जी, आ गले लग जा, 1994 की फिल्म।
1: Rabina Khan, now every Monday to Thursday at 1 PM on Leica Radio Greater Manchester. Leica Radio.
0: बिल्कुल जी, लाइक रेडियो मंडे टू थर्सडे मेरा और आपका साथ रहता है। द मैगजीन शो में बातचीत भी होती है, कोई इधर उधर की गपशप भी लगती है। सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा वाला तो सवाल ही नहीं उठता, सब कुछ ही हो रहा है। आज जो मेरी स्टोरी है उसमें आप बड़े मतलब निकाल सकते हैं, तो थर्ड आवर में जरूर सुनिएगा। चलिए आपसे एक बात कहती हूँ, अभी बहुत से लोग बहुत सी बातों को डिफरेंट तरीके से बोलते हैं, यह हम लोगों ने सीख लिया, हम समझते हैं ये ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीका है उर्दू बोलना। उर्दू हो, ज़्यादातर उर्दू की इस वक्त मैं बात कर रही हूँ। मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक बात सुनी कहीं कि अक्सर लोग कहते हैं जी आज क्या खाने में क्या बनाया है। अमूमन यही कहा जाता है खाने में क्या बनाया है, जबकि जब अगर इसकी इंग्लिश जो ट्रांसलेट करके देखें, व्हाट यू हैव कुक्ड है ना, तो कुक्ड का मतलब पकाना, तो असूलन तो ये होना चाहिए आज आपने क्या पकाया है, क्या बनाया है। उसके लिए बड़ी मजे की कुछ एक्सप्लेनेशन थी कि क्या आप बिल्डर हैं, आप मकान बना रहे हैं, आप ब्लैकस्मिथ हैं, आप जो है वो कारपेंटर हैं, आप कुछ बना रहे हैं, आप पका रहे हैं भाजी। तो पकाना जो है उसको बनाने के उसमें नहीं डाले, इधर का वर्ड उधर ना करें। तो पता नहीं अब कोई कहेगा जी आज आपने क्या बनाया है घर जाके, या ये कि आज क्या पक्का है, ये भी होता है ना। बस लोग कहते हैं हांडी जो है वो चूल्हे पर रखी है, ये नहीं कहते कि मतलब खाना पक रहा है, हांडी चूल्हे पर रखी है, मैंने देखा है। चलिए आपको पाकिस्तानी गीत सुनवाते हैं और बहुत ही प्यारा गीत है, सुनते हैं।
1: The Pakistani Hit of the Hour is brought to you by the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.

0: इसको कहते हैं जी पूछताछ के।
1: Like a radio.
0: बात करनी है तो बात करो, इतनी तमहीद का वक्त किसके पास है। Anyway, एक बात मैंने पिछले दिनों कही थी और वो ये थे, बाज़कात मुंह से कुछ लफ्ज गलत मलत निकल भी जाते हैं। एक बहुत ही जबरदस्त गुफ्तगु चल रही थी जिसका मैंने मिसाल दी थी, मिसाल भी देना होती है कि सूरज चमकती है, हवा चलता है, ये तो चले बोलचाल में कभी इंसान का इधर से उधर लफ्ज जो है वो रुड़क जाते हैं, लेकिन बात चीजें ऐसी होती हैं जो किसी एरिया के लिए खास तौर पर उसी तरह उनकी लैंग्वेज होती है। मसलन मैंने इस नोट किया है, कुछ लोग कहते हैं कि मतलब कपड़े पहनने को कहते हैं कपड़े डाल लो। कभी आपने सुना है? वैसे बताइएगा मुझे अगर आपने सुना हो, बहुत दफा कपड़े डाल लो। और हम लोग आम लफ्ज में ये कहेंगे ना कि कपड़े रस्सी पे डाल दो, है ना। आई मीन के इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह, कपड़े पहनने के लिए पहनना ही लफ्ज होता है, लेकिन ये इजाद है ना, पर्सनल इलाकों की इजाद है। कभी सुना आपने ऐसे? बताइएगा।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: हाँ जी, पैसों शैसों की बात हो जाए, बात हो रही है कि लफ्जों की, तो अगर आप इंडिया मनी सेंड करना चाहते हैं तो आज आपको वन पाउंड जो है वो देगा 126.51 इंडियन रुपीज। सो सेंड मनी टू इंडिया वाया SBI यूनो ऐप और ब्रांच बिफोर एंड ऑफ जून एंड बी इन टू विन अ 75 पाउंड वाउचर डेली व्हेन यू सेंड ओवर 1000 पाउंड एंड 1 ग्राम गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर 2000 पाउंड। टीज एंड सीज अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. The Magazine Show with Robina Khan.
2: Like a radio. Cinderella is back for 2026. Beck Theatre Hayes, 22nd and 23rd of July. Arts Depot Barnet, 17th and 18th of October. Theatre Royal Stratford East, 20th to the 31st of October. With smash hit music by the hitmaker PBN, Cinderella is guaranteed dizzy panto fun for all the family. And with tickets starting from £15, click rifcotheatre.com and be sure to book before the clock strikes midnight. Cinderella goes back into the Bollywoods.
3: Radio partner, Leica Radio.
4: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
5: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020 8839 0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
6: Are we there yet?
7: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
6: Relax, I've booked the Uber already.
7: How? My roaming isn't even working yet.
6: I switched to Simsy before we left London.
7: Simsy? Since when are you the tech expert?
6: Since I decided I want a stress-free holiday.
8: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simsy eSIM for affordable dates in India and across the globe. Simsy, holiday travel simplified.
9: T's and C's apply. बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल
10: और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल।
11: यू मीन सफल ट्रेवल?
10: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर।
11: एक बार आजमाइए जरूर सफल ट्रेवल।
10: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
11: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए।
12: कॉल सफल ट्रेवल 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक ऑन 0161-250-1250। दैट्स 0161-250-1250।
13: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
14: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
13: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
14: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
13: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
14: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। Limited offer. Terms and conditions apply.
15: Caratino Better Ghee, the healthier, low price, cholesterol free butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
16: News headlines up next. Leica Radio, Greater Manchester.
17: हाय, मैं हूँ अश्विनी। हर शाम 7 से 10 बजे तक सुनिए मुझे लाइक अ गोल्ड रेडियो लंदन एंड ग्रेटर मैनचेस्टर इन द इवनिंग शो विद अश्विनी। फीचर्स बड़े ही इंटरेस्टिंग अमेजिंग आप सभी के लिए।
16: द नॉर्थ वेस्ट विद लाइक अ रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड द साउथ विद लाइक अ रेडियो ग्रेटर लंदन। वी आर योर लाइक अ रेडियो नेटवर्क।

0: This is Rabina Khan with The Magazine Show. Leica Radio.
1: प्रोग्राम का सेकंड आवर शुरू भी हो चुका है. दो गीत भी हम आपको सुनवा चुके. वो लोग जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जो लोग हमारे साथ शुरू से हैं, यानी एक से लेकर प्रोग्राम शुरू होता है, और इस तरीके से ये बात भी वो लोग जानते होंगे कि हमने कुछ वर्ड्स पे बात की अभी कि लव्स का इस्तेमाल वक्त के साथ साथ बदलता रहता है. हम अपनी अंदाज से, अपनी आसानी से या अपनी सोच से उसको बदल लेते हैं. कोई इतना बड़ा उसे मीनिंग का फ़र्क तो नहीं पड़ता है या फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन उसके बावजूद वो एक ख़ास एरिया को ज़रूर रिप्रेजेंट करता है. अभी देखिए, अभी इश्क जो है उसके साथ ज़्यादातर क्या कहते हैं, कबूल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अभी जो गीत मैंने आपको सुनवाया उसका नाम ही था इश्क मंजूर, यानी मंजूर भाईजान भी होते हैं, मंजूर नाम भी होता है ना लोगों का. और इस गीत में बहुत ही अच्छा लगा, मुझे लगता है कि आपको भी शायद अच्छा लगा हो. बस नए गीत होते हैं लेकिन उनकी पोइट्री जो है उसमें वही एसेंस होता है जो कि रियल पोइट्री का होता ही है. हाँ, उसमें बड़ा हिप हॉप म्यूजिक हो और बहुत से लोग हों. सनी संसाखरी की तुलसी कुमारी, ये इसकी फिल्म का नाम था. और दूसरा गीत क्यूटी पाई ए दिल है मुश्किल. आपके मैसेजेस मिल रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी. मैसेजेस अच्छे लगते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस किसको अच्छे नहीं लगते, लेकिन कोई वक्त होता है कि अच्छे नहीं भी लगते, लेकिन ज्यादातर रियल वर्ड्स में अच्छे ही लगते हैं.
0: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स.
1: और अभी आवाज सुनेंगे आप जावेद अली की तुम मिले, 2009 की फिल्म, और ये है टाइटल ट्रैक.

0: This is Rabina Khan with The Magazine Show. Like a Radio.
1: अभी आप सुन रहे थे एक बहुत ही आइकॉनिक फिल्म का बहुत ही पॉपुलर जो सॉन्ग था वो आपके लिए हमने अभी अभी प्ले किया. ये वो शायरी है जो सुनकर मजा ही आ जाता है. कहते हैं शायरी वही अच्छी होती है जिसमें आपको कई मीनिंग मिल जाए. यानी एक शेर एक होता ना फेसबुक पे कुछ शेर होते हैं मिसाल के तौर पर, तुझको तो खैर शहर के लोगों का खौफ था और मुझको अपने घर वालों से इजाज़त नहीं मिली. एक इस तरह की शायरी होती है और एक अभी जो मैंने आपको सुनवाई. इस मोड़ से जाते हैं कुछ सुस्त कदम रस्ते. तो आप किसी भी एंगल से सोच लें, इमेजिनेशन में ले आएं, एक ब्यूटीफुल जो एक खूबसूरत सा एक माहौल या एक सोच आपको जरूर मिलती है. अब मैं आपको लेकर जा रही हूँ एक इम्पोर्टेंट बात की तरफ. साथ रहिए.
0: खबर पर नजर विद रुबीना खान. Like a radio.
1: कुछ खबरें होती हैं पॉलिटिकल जो जाहिर है कि वो भी जाननी चाहिए और उनको पता होना चाहिए व्हाट्स हैपनिंग अराउंड. लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको एक नई सोच एक नई डायरेक्शन देती हैं. अब मैं आप तमाम सुनने वालों से अगर आप थोड़ी सी तवज्जो दे सकते हैं तो ठीक है. और मैं ये कहना चाहूँगी कि आप उस वक्त का को इमेजिन करिए अपने जहन में जब दुनिया शुरू में बन रही थी. और ये बात अगर मैं कुछ सालों के हवाले से कहूँ 41 करोड़ 50 लाख साल पहले जब दुनिया वजूद में आ रही थी, पानी था, अंधेरा था, डैम्पनेस थी और इस तरह जो कायनात है वो आ रही थी. अब इस पर हम डिबेट नहीं कर रहे कि कौन सा किस तरीके से, इसमें हम मज़हब को नहीं ला रहे बिल्कुल भी कि किस तरह दुनिया वजूद में आई. लेकिन जो साइंटिफिक चीज़ों के हवाले से हमारे पास खबरें आती हैं वो आपको ज़रूर आपके जहन की खिड़कियाँ खोलती हैं और उनका जवाब हमें मिलता है. तो क्यों नहीं उसको हम सुने और उसको समझने की कोशिश करें. तो बात हो रही है इतने साल पुराने दुनिया की जब बिल्कुल कीड़े मकोड़े बन रहे थे. उस वक्त मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के हालिया एक रिसर्च हुई है उसमें उन्होंने कहा है. अब ये बात इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है कि एक बिच्छू था स्कॉर्पियन जो उस वक्त, अब छोटे छोटे होते हैं लेकिन उस वक्त 1 मीटर लंबा था, ये अंदाज़ा लगाएं. उसको उस वक्त सर्वाइवल के लिए थी. अब जब सर्वाइवल की गेम है ना जिंदगी, करते करते साइजेस भी बहुत सी चीज़ों के छोटे हो गए. अब उस तरह के जानवर नहीं है डायनासोर की तरह कि बहुत लंबे बड़े, और वो उस वक्त का ज़माना था. अब देखें हर चीज़ जो है वो इर्तकाई मरहल से गुजरते गुजरते कहाँ पहुँची है. तो अब ये जो रिसर्च हुई है ये भी अब बहुत चीज़ें बताने के लिए एक टूल है कि आज से इतने साल पहले यानी 41 करोड़ 50 लाख साल पहले इस तरह का एक बिच्छू जो अब छोटी सी चीज़ है उस वक्त वो 1 मीटर लंबी चीज़ होती थी. बहुत ज़्यादा खतरनाक भी होता होगा.
0: Like a radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.

0: breaks are brought to you by Southall Travel.
1: अगर आप हॉलीडे बुक करना चाहते हैं, हॉलीडे पे जाने का इरादा बनाया है, तो साउथहॉल ट्रेवल से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और इस समर को मेमोरेबल साउथहॉल ट्रेवल से अपने ब्रेक को मजीद खुशगवार बना सकते हैं. एक्सप्लोर करें बीचेस और सिटी से दूर एरियाज, और इसके लिए आपको बड़ी अच्छी डील्स मिल सकती हैं साउथहॉल ट्रेवल से, और जिनका ट्रस्ट है, लोगों को उन पर ट्रस्ट है और ब्रिटिश ट्रेवल अवार्ड याफ्ता भी हैं. विजिट साउथहॉल ट्रेवल और कॉल ऑन 0208574 8410.
0: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. 90s throwback plays now.
2: Like a radio.
1: फिल्म का नाम है हम है राही प्यार के, अलका याग्निक की आवाज़.

0: ऐसा लगता है कि एक ही सांस में गाया गीत है। कोई इतना लंबा सांस ले तो नहीं सकता, लेकिन ऐसे ही मशरूफ सॉन्ग है ये। बिजी।
1: दिस इज रबीना खान विद द मैगजीन शो। SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: इंडिया मनी सेंड करना चाहते हैं तो आज आपको 1 पाउंड से मिलेंगे इंडियन रुपीज 126.51 रुपीज। और इंडिया रकम भेजिए SBI योनो ऐप के जरिए या ब्रांच के जरिए जून से पहले पहले, तो आप विन कर सकेंगे 75 पाउंड का वाउचर अगर आप 1000 पाउंड भेजते हैं, और 1 ग्राम गोल्ड कॉइन जीत सकते हैं व्हेन सेंडिंग ओवर 2000 पाउंड। टीज एंड सीज यानी टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. The Magazine Show with Rabina Khan.
2: Like a radio.
3: सर्विस से माला माल ट्रेवल और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल।
4: यू मीन सफल ट्रेवल?
3: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर।
4: एक बार आजमाइए जरूर सफल ट्रेवल।
3: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
4: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए।
5: कॉल सफल ट्रेवल 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक ऑन 0161-250-1250। दैट्स 0161-250-1250।
6: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 0208839080 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
7: हर केस में कम से कम एक विटनेस तो होता ही है, मर्डर और खुद।
8: कोलकाता में हमारे घरों के आसपास ये सब हो रहा है। आई एम डॉक्टर संदीप चक्रवर्ती, ओनर साइकियाट्रिस्ट।
9: वन मोर ग्रूसम मर्डर।
7: दोनों विक्टिम्स 20s में, दोनों फीमेल। ही इज नॉट गोइंग टू स्टॉप, देयर आर मेनी मोर इन डेंजर।
10: करिश्मा कपूर इन एंड एज ब्राउन, नाउ स्ट्रीमिंग ऑन हिंदी Z5।
11: Location, location, location.
12: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
11: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
12: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
11: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
12: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
11: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
12: To book, call our London office on 02 03963-5757. Greens by Danube. Prime location,
11: high appreciation
12: in Dubai.
13: Maharaja Tours presents Diwali Dhamaka 2026. 12-night Diwali or Navratri cruise on MSC Virtuosa. Bhajan jamming, Mehfil nights, Ras Garba, Bollywood entertainment or full-on maza. Spain or Portugal ke sunshine ports, full board cruise or Indian khana included. From only £1,179 per person, visit maharajatours.co.uk or call 07956-154-846.
14: Pepe's Piri Piri is turning up the heat in Bolton. With grills fired up and ready to serve you flame-grilled Piri Piri favourites. Derby Street in Bolton. Pepe's Piri Piri. Definitely worth a visit.

0: आवाज अभी सुन रहे हैं आप ज्योति न्योरा की, ज्योति न्योरा की और फफे कुटनिया, कितना शकील और मुश्किल।
1: Greater Manchester on 963 AM and 1377 AM.
0: उदित नारायण, अलका याग्निक की आवाजें। मेरे यार की शादी है 2002 की फिल्म।

0: ब्यूटीफुल ट्रैक फिर कभी एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी 2016 लाइक रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर द मैगजीन शो आप सुन रहे हैं रुबीना खान के साथ.
1: The Magazine Show with Rubina Khan.

0: This is Rabina Khan with The Magazine Show. Like a radio.
1: अभी आपने आवाज सुनी नाजिया हसन की और ये गीत था डिस्को दीवाने एल्बम से जो कि 1981 में रिलीज हुई थी और ये डेब्यू एल्बम थी नाजिया हसन की जो कि 14 कंट्रीज में इसको रिलीज किया गया था और ये पहली पाकिस्तानी सिंगर थी जो ब्रिटिश चार्ट्स पर जिनके गीत आए थे. ऐसे ही नहीं लोग आज तक याद रखते हैं नाजिया हसन. कुछ कमाल के गीत थे.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. LIKA Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. With the UK's biggest Asian hits. A LIKA Radio Classic. Plays now.

ये थे मलका तरन्नुम अनुज झा की आवाज में दिल दिया लगिया फिल्म का नाम था और चांद और सितारा हमेशा साथ साथ होता है ये सुनते आए हैं बड़ा ही

0: मिला था, बहुत शुक्रिया आपने मैसेज किए और आपको अच्छे लगे कुछ गीत, बड़ी मेहरबानी। एसपी से ज्यादा आपका भी मैसेज था और सुफियान आपका मैसेज। एंड देन अभी फरजाना ने हम दस बेदस्तूर अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ा और कोई ऐसा मैसेज लिखा है जो मुझे समझ में नहीं आया, मैं पढ़ना चाह रही थी लेकिन मुझे समझ नहीं आया ऑनेस्टली। और रुखसाना आपने भी मैसेज किया है, रफी साहब द ग्रेट, यस, इसमें क्या शक है, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ जब सुनते हैं तो बस ऐसा लगता है कि कोई गाना उठा ले कोई भी। एक तो ज़माने में जो ये क्लासिक सॉन्ग है, शायरी जो है उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता था, एक्सलेंट शायरी। और फिर मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, आशा भोसले की आवाज़ें हों, तो क्या कॉम्बिनेशन है। चलते हैं आपको सुने सुने के भाव की तरफ, गोल्ड रेट की तरफ।
1: द लेटेस्ट गोल्ड रेट इज ब्रॉट टू यू बाय हार्टी हैंक्स, योर डिजिटल ग्रोथ पार्टनर। दिस इज लाइका रेडियो।
0: सो जी, सीरियस बिजनेस है और आज का गोल्ड रेट नोट कर लीजिए, 104.37 पर ग्राम का ये रेट है, यानी 104 pounds 37 pence पर ग्राम।
1: Gold Rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com.
2: Like a radio. We hit
1: like a radio. The Magazine Show with Robina Khan.
2: Like a radio.
3: सर्विस से माला माल ट्रेवल और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल।
4: यू मीन सॉफ्टल ट्रेवल?
3: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर,
4: एक बार आजमाइए जरूर सॉफ्टल ट्रेवल।
3: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
4: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए।
5: कॉल सॉफ्टल ट्रेवल 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक ऑन 0161 250 1250। दैट्स 0161 250 1250।
6: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner like our radio.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 0202-0239-63-5757. Greens by Daniel. Prime location,
7: high appreciation
8: in Dubai.
9: Step into the spotlight and get modeling and casting opportunities
10: with Miss, Mrs. and Mr. Asiana 2026.
9: Brought to you by Asiana in association with ZTV and Leica Radio.
10: Get national exposure and take your first step into the world of glamour.
9: The North England Heats will be taking place at the luxurious Park Hall Resort and Spa in Preston, Lancashire.
10: On Sunday, July 5th. Apply now at missasiana.co.uk.
11: Pepe's Piri Piri is turning up the heat in Bolton, with grills fired up and ready to serve you flame-grilled Piri Piri favourites. Derby Street in Bolton. Pepe's Piri Piri. Definitely worth a visit.
12: Caratino Better Ghee, the healthier, low-price, cholesterol-free butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
1: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
13: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल। एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे।
1: Artist of the Week is brought to you by our

0: गाने दे, करीब करीब सिंगल, फिल्म भी जबरदस्त और ये गीत तो क्या कहने, जाने ही दे, इसकी क्या ही तारीफ करें। Like a radio. वाकई कुछ चीजें होती हैं जिनकी तारीफ करना बड़ा मुश्किल होता है, इतना ये सॉन्ग मुझे पसंद है। मुझे उम्मीद है कि आपको भी पसंद आया होगा सुनना। तो आतिफ असलम जो कि प्लेबैक सिंगर हैं, सॉन्ग राइटर हैं, कंपोजर हैं एंड एक्टर भी हैं, उन्होंने बेशुमार गाने गाए हैं इंडिया और पाकिस्तानी दोनों मुल्कों की फिल्मों के लिए, और अभी द ओ टू में परफॉर्म करने जा रहे हैं 14th of June 2026 को। अब बिग कॉन्सर्ट होने जा रहा है आतिफ असलम का द ओ टू लंदन में, और डेट आप नोट कर सकते हैं 14th of June 2026।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: So, India money send करना चाहते हैं तो आज आपको British sterling का exchange rate मिलेगा 126.51. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win a £75 voucher daily when you send over £1,000 and a 1 gram gold coin every week when sending over £2,000. T's and C's apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. The Magazine Show with Robina Khan.
2: New world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
3: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
4: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
3: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
4: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
3: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
4: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
3: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
5: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020 8839 0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
6: हर केस में कम से कम एक विटनेस तो होता ही है, मर्डरर खुद।
7: कोलकाता में हमारे घरों के आसपास ये सब हो रहा है। I'm Dr. संदीप चक्रवर्ती, I'm a psychiatrist.
8: One more gruesome murder.
6: दोनों विक्टिम्स 20s में, दोनों फीमेल। He's not going to stop. There are many more in danger.
9: करिश्मा कपूर in and as Brown, now streaming on Hindi Z5.
10: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल।
11: यू मीन सफल ट्रेवल?
10: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर।
11: एक बार आजमाइए जरूर सफल ट्रेवल।
10: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
11: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए।
12: कॉल सफल ट्रेवल 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक ऑन 0161 250 1250. दैट्स 0161 250 1250.
13: Pepe's Piri Piri is turning up the heat in Bolton. With grills fired up and ready to serve you flame-grilled Piri Piri favourites. Derby Street in Bolton. Pepe's Piri Piri. Definitely worth a visit.
14: Want magic in every bite? Grab Hero Foods. Superior spices, wholesome dals, chapati flours, oils, sauces, pickles, plus much more. Ingredients sourced from around the world, packed especially for you. Hero Foods, king in quality, king in taste.
15: Rizcon, next with Drive.
16: Leica Radio.
15: Leica Radio, Greater Manchester. Leica Radio Network, broadcasting across Greater Manchester. Robina Khan, now every Monday to Thursday at 1 p.m. on Leica Radio, Greater Manchester. This is Leica.
0: तो इसके साथ ही रुबीना खान को आज के द मैगजीन शो से इजाजत दीजिए. अपना सभी का बहुत ख्याल रखिएगा. आपसे मुलाकात होती है, बात होती है कल दोपहर एक बार फिर से. उस वक्त तक के लिए इजाजत. इंतजार कीजिए जय का.

0: sponsored by Pepe's. A new Harissa Honey Melt, released for a limited time only. Try one today. Rich Harissa, mixed with sweet hot honey. Pepe-licious.
1: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉरपोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाएं। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
2: लोकेशन
3: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
2: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
3: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 02039635. 757 Greens by Danube, prime location,
2: high appreciation
3: in Dubai.
4: Maharaja Tours presents Diwali Dhamaka 2026, 12-night Diwali or Navratri cruise on MSC Virtuosa. Bhajan jamming, Mehfil nights, Ras Garba, Bollywood entertainment or full-on maza. Spain or Portugal ke sunshine ports, full board cruise or Indian khana included. From only £1,179 per person, visit maharajatours.co.uk ya call 07956154846.
5: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
6: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
5: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
6: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
5: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
6: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
7: Mom always said, Beta, clove and neem keep the mouth healthy. Now that same trusted wisdom comes from Baidyanath, over 100 years of Ayurvedic legacy in Siddhayu toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurveda that fits your life.
8: Want magic in every bite? Grab Hira Foods. Superior spices, wholesome dals, chapati flours, oils, sauces, pickles, plus much more. Ingredients sourced from around the world, packed especially for you. Hira Foods, king in quality, king in taste.
0: Bradford Mellor, 1st and 2nd of August. Exclusive radio partner, Leica Radio. Next, Ashwini, in for Anissa Nasir on The Evening Show on Leica Radio.

0: അര കൂട്ടമേശുവാകെ അര കൂട്ടമേശുവാകെ അര കൂട്ടമേശുവാകെ
1: ലൈക്ക് എ റേഡിയോ. Yes, it's 6:50 p.m. on Monday, 8th of June. Aur ab wo time aa gaya hai, the inevitable conclusion of today's Drive Time Show with your host Jay. Thank you so much to everybody who took part in today's show. Bada maza aaya aapke saath. But don't worry, because I'll be back tomorrow 4 till 7 p.m. bringing you the same vibes, and hopefully dhoop bhi nikli hogi, uske saath hum bhi aapke saath baith ke जबरदस्त गाने सुनेंगे, गपशप करेंगे और आपके साथ थोड़ी सी शेयरिंग ऑफ द न्यूज करेंगे. अंटिल देन, हैव योरसेल्फ अ लवली लवली लवली सनी इवनिंग. इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी. अंटिल देन, वी गोना लीव यू विद टू इनक्रेडिबल ट्रैक्स, मीशा शफी उमेर जसवाल विद जालिमा एंड वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक्स ऑफ ऑल टाइम, सयो नी बाय जुनून अली अजमत. अंटिल टुमारो, गुड लक and good night.
2: Your number one choice in Greater Manchester. This is Leica Radio, part of the Leica Radio Network.

0: the Track was brought to you by LaikaRadio.com. We're live across Greater Manchester and online via the Laika Radio app and website on LaikaRadio.com. Listen live or listen back.
1: This is Laika Radio.
2: प्यार झुकता नहीं इस फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में सुना है आपका ओ दिल पर जानिए। दोस्ती के बारे में बातें हो रही हैं और सब लोग अपने दिल के राज जो है मेरी तरफ खोलते जा रहे हैं। दोस्ती कितना प्यारा रिश्ता है ना। अब कहीं ना कहीं आपका और मेरा भी तो ये दोस्ती वाला रिश्ता शुरू हो गया है ना। जब से मैं शोज रेगुलरली कर रही हूँ तो आप और हम जो है अब एक दूसरे को काफी हद तक जान चुके हैं। जानते हैं कि नहीं, है ना। तो आज का दिन जो है जैसे मैंने कहा कि मनाया जा रहा है दोस्ती वाला दिवस, फ्रेंडशिप डे। इज डिफरेंट, इट्स बेस्ट फ्रेंड्स डे, है ना। फ्रेंड्स होते हैं हमारे लाइफ में, लेकिन बेस्ट फ्रेंड्स जो होते हैं उनका और हमारा जो ये रिश्ता होता है वो बहुत खूबसूरत होता है। आई एम लकी दैट आई हैव अमेजिंग फ्रेंड्स इन माई लाइफ एंड आई हैव अमेजिंग बेस्ट फ्रेंड्स इन माई लाइफ। दे आर माई स्कूल फ्रेंड्स। और बचपन से जब आपकी जर्नी आपके उन दोस्तों ने देखी होती है ना, तो आपके उस रिश्ते में कोई भी कड़वाहट, कोई भी जेलेसी, कोई भी इनसिक्योरिटी नहीं होती। अच्छा, ऐसा नहीं कि स्कूल की ही मेरी जो फ्रेंड्स हैं, बेस्ट फ्रेंड जो हैं वही बेस्ट फ्रेंड्स हैं, लेकिन जिंदगी के आगे जैसे जैसे मैं पड़ाव में बढ़ती चली गई, मुझे यहाँ पे लंदन में भी मेरी फ्रेंड्स वो मिली जो आधी जिंदगी कटने के बाद मिलती है, एंड उनके साथ में भी मेरा बेस्ट फ्रेंड वाला नाता है। सो मैं बड़ी ब्लेस्ड हूँ और मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है वो भी सुन रही है शो को। तो भाई हैप्पी बेस्ट फ्रेंड्स वाला डे आपको भी। और हमारी ये दोस्ती ना इतना प्यारा और इतना प्योर रिश्ता होता है ना, जैसे मैंने कहा कि जब आप एक दूसरे के लिए सिर्फ और सिर्फ अच्छा सोचते हैं, भला सोचते हैं, और वहां पे जब आपको पता होता है कि यार ये जो है ना, ये जो इंसान है इसके सामने बेपरता होकर मैं बात कर सकती हूँ, मैं जज नहीं होने वाली किसी भी चीज को, अगर मैं गलत हूं तो ये आके मेरे कान पकड़ेगी तो फटके भी देगी। फटके इस मराठी वाला आज सच कोई फटके देता नहीं है। दैट्स अ वे वी से इन फ्रेंडशिप। एंड जब हमारे लिए कुछ अच्छा होता है तो वो अच्छे सजेशंस भी देंगे। दोस्ती क्या यार, दोस्ती में ना एक्सेप्टेंस है। बाकी जो रिश्ते हैं ना हमारे, उसमें कहीं ना कहीं हम कंडीशनल हो जाते हैं। आपको क्या लगता है? अच्छा, आज हम दिल खोल के दोस्ती वाले इस रिश्ते पे बात होने वाली है। मेरे हिसाब से दोस्ती में एक्सपेक्टेशन आती है, मैं ना नहीं कह रही कि नहीं आती, लेकिन उसमें ना हम एक दूसरे को बदलने नहीं चाहते हैं, हम सजेस्ट करते हैं। लेकिन बाकी सब रिश्तों में ना जाने क्यों हम एक दूसरे को बदलने लगते हैं। आपको क्या लगता है? आइए आइए आइए हुजूर, जो हुजूर आते आते देर कर रहे हैं उनके लिए भी आते चलिए। स्वागत है आपका इस शो में जिसका नाम है द इवनिंग शो विद अश्विनी। और साथ में वही किशोर कुमार फैंस, देखो ना इस वीक हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक भी किशोर कुमार हैं। तो किशोर कुमार फैंस, गेट रेडी फॉर क्रेजी फॉर किशोर, अ स्पेशल म्यूजिकल नाइट फीचरिंग जॉय इंद्रायणी, संजय विद हिनल एंड 515 बैंड। इट टेक्स प्लेस ऑन फ्राइडे 19th जून एट द प्रिंस रीजेंट होटल, चिगवेल, एसेक्स। Tickets available at eventbrite.co.uk or call 020-8514-5400. Exclusive radio partner, Laika Gold Radio.
0: This is the Laika Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
3: The Evening Show with Ashwini.
2: मैं हूं अश्विनी। हर शाम 7 से 10 बजे तक सुनिए मुझे लाइका गोल्ड रेडियो लंदन एंड ग्रेटर मैनचेस्टर इन द इवनिंग शो विद अश्विनी। फीचर्स बड़े ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग आप सभी के लिए।

0: मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। इट्स 36 मिनट्स पास्ट 7। आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइक अ गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइक अ रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। शो का नाम द इवनिंग शो विद अश्विनी। अच्छा, वीकेंड के बारे में सभी मुझे पूछ रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया था फ्राइडे आप सभी को दैट आई विल बी एंकरिंग फॉर वाद्य महोत्सव। एंड लेट मी टेल यू, आई एम स्टिल in that zone of that Vadya Mahotsav. So 108 dhol wahan pe the and tasha jo hote hain, that is wo also nearly 100 tasha, 3000 plus people. पूरे 5 घंटे जो है, आधा टाइम आई वॉज ऑन स्टेज, वहां से अनाउंसमेंट हो रही थी, उसके आधे टाइम मतलब आधे इधर आधे उधर जो मैं डायलॉग बोलती हूँ ना, वैसे आधा टाइम ऑन स्टेज एंड आधा टाइम व्हेन आई केम ऑन द ग्राउंड विद ऑल द ढोल ताशा, जो जितने भी वो ग्रुप्स आए थे उन सबके साथ में इंटरेक्शन तो हुई। साथ में 3000 प्लस पब्लिक पूरे स्टैंड में बैठी थी, चेयर लगाई गई थी। एंड जो एक जज्बा होता है ना, जब आप लोग कहीं आते हैं किसी इवेंट को देखने के लिए, तो छाते वाते रेन कोट लेके सब आए, बारिश जो है छमछम करती वर्षा आ रही थी बीच बीच में, पर हमने भी कहा कि नहीं, हम यहां से नहीं हिलेंगे। एंड बहुत बहुत बहुत सुंदर वो पूरा का पूरा जो है वो इवेंट रहा, SVRTU के ये जो टेंपल के लिए ये इवेंट रहा, इसमें लाइका ने भी अपना बिल्कुल योगदान दिया हुआ है, तो जाके जरूर देख लीजिएगा साइट पे, बहुत बहुत सुंदर उसमें हमने क्लिप्स वहां पे डाली है। सभी लोग अपने अपने दोस्तों के बारे में बता रहे हैं, बिल्कुल अपने बेस्ट फ्रेंड्स का नाम बताना चाहते हैं बता दीजिए। वैज यू सेड कैन यू आउट आउट फॉर माई फ्रेंड आमिर, आमिर आपके दोस्त आपके नाम से चिल्ला रहे हैं, देखो अगर मैं इसको ट्रांसलेट करने चाहूँ तो बिल्कुल बताइए। अंजलि अंजू माई बेस्ट फ्रेंड इन लंदन वो मुझे सुन रही है, माई बेस्ट फ्रेंड दिशा इन वॉशिंगटन वो मुझे सुन रही है, माई फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड चैताली वो मुझे पुणे में सुन रही है, एंड माई बेस्ट फ्रेंड इन मुंबई ममता सोनाली वो भी मुझे सुन रही है। बहुत सारी बेस्ट फ्रेंड्स हैं मेरी, तो इसके साथ में जो फ्रेंड होती है जो आपके बहुत करीब होती है, उन सबको भी आज वाला आज का दिन मुबारक है ना। दोस्ती पे एक गीत सुनाऊं आप लोगों को, या अंडरस्टूड है ना। चलते हैं आगे।
1: Get all the latest travel updates for Manchester at Breakfast and Drive. This is Ashwini in for Anisa Nazir on the evening show. Like a
2: Cinderella is back for 2026. Beck Theatre Hayes, 22nd and 23rd of July. Arts Depot Barnet, 17th and 18th of October. Theatre Royal Stratford East, 20th to the 31st of October. With smash hit music by the hitmaker PBN, Cinderella is guaranteed dizzy panto fun for all the family. And with tickets starting from £15, click rifcotheatre.com and be sure to book before the clock strikes midnight. Cinderella goes back into the Bollywoods. Radio partner Leica Radio.
3: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
4: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
3: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
4: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
3: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
4: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
3: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube, prime location,
5: high appreciation
6: in Dubai.
7: Badhiya service se

0: मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ। इट्स 49 मिनट्स पास्ट 7। आप सभी ने ट्यून इन किया द इवनिंग शो विद अश्विनी। तो वियर्ड न्यूज में ये मोहतरमा जो है फ्लोरिडा की, ये मोहतरमा इन्होंने एक साइंटिस्ट को किडनैप किया क्योंकि ये अपनी कैट को अमर बनाना चाहती थी। अभी हम संगीत सुनने वाले, हमें पता है कि प्यार हमारा अमर रहेगा लेकिन कैट को अमर बनाना चाहते हैं। ओके, डेफिनेटली कुछ ना कुछ इश्यूज हो जाते हैं लोगों के जब वो प्यार में हो जाते हैं ओवर दीवाने। कंट्रोल कहाँ और कैसे रखना चाहिए यही तो हमें डिसाइड करना है। नेक्स्ट आवर की तरफ आप और हम बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट आवर में इमोशन ऑफ द डे जरूर सुनेगा।
1: Ashwini, brightening up your weeknights. This is Ashwini, in for Anisa Nazir, on The Evening Show. Like a
2: weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
3: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल
4: और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल।
5: यू मीन सफ्टल ट्रेवल?
4: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर।
5: एक बार आजमाइए जरूर सफ्टल ट्रेवल।
4: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
5: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए।
6: कॉल सफ्टल ट्रेवल 24 hours a day, 7 days a week ऑन 0161-250-1250। दैट्स 0161-250-1250।
7: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
8: Atif Aslam live in the UK.
7: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
8: Book your tickets now at AXS.
7: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
8: Exclusive radio partner, Leica Radio.
9: Frankie Goes to Bollywood is back. Dive into a breathtakingly colourful journey of romance, epic songs, spectacular dancing with brand new songs by Bollywood hitmaker Harry Anand. This show-stopping musical celebrates ambition, transformation and the power of owning your own story. From the producers of Britain's Got Bhangra and Surinderella, Frankie Goes to Bollywood comes to the Birmingham Rep, 10th to the 13th of June. For tickets and more info, click birmingham-rep.co.uk. Radio partner, Leica Radio.
10: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
11: Pepe's Piri Piri is turning up the heat in Bolton. With grills fired up and ready to serve you flame-grilled Piri Piri favourites. Derby Street in Bolton. Pepe's Piri Piri. Definitely worth a visit.
1: This is Leica Radio, Greater Manchester. Broadcasting on 1377 AM and 963 AM. You can also catch us on DAB Digital Radio across Greater Manchester and East Lancashire. We're also available on Alexa. Simply tell Alexa to play Leica Radio Manchester or download the Leica Radio mobile app. Did you know you can advertise on this station, Leica Radio, Greater Manchester, plus our other offerings, Leica Radio, Greater London, Leica Gold, Greater London, and Leica Radio, Leicester. Call 0161-250-8222. That's 0161-250-8222. Or email sales@leicamedia.co.uk.
12: ZTV HD पर देखिए एक अनोखी प्यार की दास्तां। मिलिए 46 साल के बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन और 19 साल की प्यारी सी अनु से।
13: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है?
14: खुद से भी ज्यादा।
12: जिन्हें तकदीर चुपके से बांध रही है एक अनजाने रिश्ते में।
14: जो बात मेरे दिल में वही बात आर्य सर के दिल में भी है।
12: क्या ये नजदीकियां बदल देगी उनकी किस्मत की रेखा? देखिए तुम से तुम तक हर रात 8 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जन मीडिया 809, BT 394।
13: Uncle G spent £40,000 on rent, but zero online. His shop is empty. His nephew's TikTok is booming. Be seen. Visit HeartyHanks.com. Hearty Hanks. Outdated is out of business. Visit HeartyHanks.com today.
15: The Evening Show with Ashwini.
1: Classic Throwback is brought to you by Leica Gold 2. Bollywood classics non-stop on the new Leica Gold 2. Available at LeicaRadio.com, via Alexa, or by using our Leica Radio mobile.

0: Welcome. This is the second hour of the evening show with Ashwini on Laika Gold Radio in London and Laika Radio in Greater Manchester. Beautiful tracks, है ना? पहला गीत आपको सुनाया जान फिल्म से 1996 में, तो 90s वाले बच्चे एवं खुश हो गए होंगे. और दूसरा है लता मंगेशकर की आवाज में अगर तुम ना होते तो 80s वाले बच्चे खुश हो गए होंगे. कुल मिला के जिनको 90s 80s के गाने पसंद है आप सभी खुश हो गए. 8:11 8:11 आप सभी ने ट्यून इन किया है आपका अपना वाला शो. अब मैं आपको अपना वाला शो क्यों बोलती हूँ, क्योंकि यहाँ पे इस शो में बिल्कुल आइए अपने मन मर्जी की बात करिए. वीकेंड पे कुछ हुआ, ऐसी कुछ चीज हो रही है जो आपको अंदर ही अंदर सता रही है, कोई बात करने के लिए नहीं है. अरे मैं हूँ ना, बस बहुत दुख दर्द पीड़ा लंबा लंबा ना लिखे, छोटे से शॉर्ट में जरा बताइए. अगर मैं आपको हेल्प कर सकी तो मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूंगी. अब हमारा जो सेगमेंट है गुड न्यूज अराउंड द वर्ल्ड, जिसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा, तो ऐसी न्यूज हमें बात करनी चाहिए ना, एक दूसरे को बताना चाहिए. क्योंकि आज आके जब हम सिर्फ वॉर की न्यूज सुनते हैं तो हमें लगता है कि अरे यार दुनिया में और भी कुछ चीजें हो रही हैं कि नहीं हो रही है. तो नहीं, बिल्कुल दुनिया में बहुत सारी अच्छी चीजें भी हो रही हैं जिनके बारे में हमें एक दूसरे को डेफिनेटली बताना चाहिए. सो इन कैनेडा डॉग्स गेट पिक्ड अप बाय अ बस एंड टेकन टू डे केयर सो दे कैन प्ले इंस्टेड ऑफ स्टेइंग होम अलोन. अरे यार यहाँ पे कहीं हो तो प्लीज बताओ, ऐसे कोई डॉग स्कूल हो तो मुझे ढूंढना चाहिए. मेरे यहाँ पे है ना मेरी पीचेस, आप सभी जानते हैं उसको, अभी उसको भी ऐसे फ्रेंड्स मिल जाएंगे तो सच में बढ़िया हो जाएगा. और साथ में स्पेन बिकम्स द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू अप्रूव पेड मेंस्ट्रुअल लीव फॉर वर्कर्स सफरिंग फ्रॉम सीवियर पेन. दैट्स रियली फैंटास्टिक. फ्रांस बिकम्स द फर्स्ट कंट्री टू फोर्स सुपरमार्केट्स टू गिव अनसोल्ड फूड टू द पुअर. बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जिनके बारे में हमें बात करते रहना चाहिए और जिसके बारे में बताना चाहिए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू डॉक्टर इन साउथ अफ्रीका बिकेम द फर्स्ट टू रिस्टोर हियरिंग यूजिंग 3D प्रिंटेड ईयर बोन्स. हेल्थ सेक्टर में इतना अच्छा काम किया जा रहा है और वो हम तक पहुंचता नहीं क्योंकि हमें वो न्यूज पता ही नहीं होती. द रिकवरी ऑफ द ओजोन लेयर इज हैपनिंग एट अ फास्टर पेस देन एक्सपेक्टेड विद अ प्रोजेक्शन ऑफ रिटर्निंग टू नॉर्मल लेवल्स बिटवीन 2040 एंड 2066. In Netherlands, they have created a village for people with dementia where caregivers play the roles of neighbors and shopkeepers to avoid a hospital-like atmosphere. Now, this was so very thoughtful. ऐसी नई नई आइडियाज जब लोगों को आती हैं तो जो पेशेंट्स होते हैं, जो केयर गिवर्स होते हैं, उनके लिए भी एक एटमॉस्फेयर कितना अलग हो जाता है ना? ओके, नेक्स्ट ट्रैक जो आपको सुना रही हूँ मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में, बैराग फिल्म से, 1976 के फिल्म है. वॉल्यूम अप रखना चाहते हैं? चलो अब ये मत मुझे मत बोलना कि अश्विनी सारे शहर में आप सा कोई नहीं.
1: Cranking out the biggest hits for the capital. This is Laika.

0: इमोशन ऑफ द डे में आज मोटिवेशनल मंडे। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले हैं ना। हम सभी के साथ में स्टोरी तो सिचुएशन तो वही है, कितने भी अप्स एंड डाउन्स आ जाए लेकिन हम अपने जज्बे के साथ जो जिंदगी में आगे बढ़ते जाते हैं और उसके साथ में जब हमें ही अपने अलग अलग रूप दिखते हैं ना तो हम सोचते हैं अरे वाह, अच्छा ये भी था मुझमें, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं इतना हिम्मत वाला हूँ या इतनी हिम्मत वाली हूँ। तो देखिए जिंदगी का ग्राफ जो है ना, वो जो मॉनिटर होता है ना जो हॉस्पिटल्स में लगा होता है कि इंसान जिंदा है या फिर चल बसे, तो वो जो ग्राफ अप एंड डाउन जाता है, दैट इज अप्स एंड डाउन्स ऑफ अ लाइफ। और जब वो लाइन सीधी चलने लगती है यानी कि जिंदगी खत्म, तो अप्स एंड डाउन्स के साथ में अगर जिंदगी आएगी तो मजा है, बहुत खुशी रहे तो भी प्रॉब्लम है, बहुत दुख रहे तो भी प्रॉब्लम है। ओके, कोई चीज अगर परमानेंट है वो है चेंज। तो आज अगर बुरे दिन हैं तो बहुत दिन नहीं रहेंगे, ये समय भी निकल जाएगा, बस इस पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ते चलिए। दैट वॉज द मोटिवेशनल मंडे वाला ट्रैक, आगे आपके लिए और भी खूबसूरत ट्रैक्स लाइंड अप है। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी।
1: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल। एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे।
0: लिव इन रिलेशनशिप एपिसोड नंबर 19 विच इज होस्टेड बाय रेडियो वाली। आर लिव इन रिलेशनशिप स्टिल अ टैबू इन आवर कल्चर? आर लिव इन रिलेशनशिप जस्ट अ ट्रायल राउंड बिफोर मैरिज? बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पे बहुत सारी डिस्कशन हुई है यहाँ पे इस पॉडकास्ट में, जरूर देखिएगा। लाइक आ एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, एमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। लाइक आ एक्स्ट्रा इज हियर।
2: दिस इज अश्विनी इन फॉर अनीसा नज़ीर ऑन द इवनिंग शो।
3: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
4: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
3: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
4: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
3: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
4: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
3: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
5: Hey, friends ke saath weekend party ho ya khud ke saath Netflix and chill, a desi tadka is total risk, hai na?
6: Well, she is talking about Jaimin Food Potato Chips. Crunchy, tasty and total desi swad in 4 mazedar flavors.
5: Crunch cannot wait. So visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods potato chips now.
2: Laika Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
7: You probably think you're pretty good at multitasking behind the wheel. I mean, you have to multitask to drive. So what's wrong with checking your phone? The thing is, your brain simply doesn't want to work. Even for quick reply, affects your concentration and makes you less able to react to hazards. If you use a mobile phone while driving, you're 4 times more likely to crash. Think. Put your phone away.
8: It's a dog walk. I do it every day at home. I don't need to plan it. Check the tide. Check my phone. Why do I need to take my...
9: Hey, boy!
10: Coast Guard, we're stuck.
11: Okay, help's on its way.
10: Hold on, mate.
12: Shoes, tied, phone.
13: Back before dark, love. Okay.
14: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard. And please, respect the water.
15: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to just say everything in English, but louder.
16: 4 beers, please, garçon!
15: If only there was a way that could work with your advertising campaign. Well, there is. And you're listening to it. Because when you amplify your advertising with radio, 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
17: If you see somebody showing any of the signs of a stroke, you don't have to think about it, you just dial 999. Use the FAST test. F, face. Has their face fallen on one side? Can they smile? A, arms. Can they raise both arms and keep them there? S, speech. Is their speech slurred? T, time. Time to call 999 if you see any one of these signs. act fast, make the call, dial 999.
9: This week's Like Extra podcast, Radio Valley talks to special guests about being South Asian and in a living relationship.
18: It's always a gamble. Life is a gamble. Marriage is a gamble. Relationships are as well. It can change within the year you meet somebody. Yeah. It can change within the year after you get married. It could change 25, 26 years after you're married. Anything can happen. Anything is possible.
2: Like Extra is here. Search for our podcast, Like Extra, on all major streaming platforms. Ashwini, brightening up your weeknights.

0: मिला ली ये घड़ियां देख रहे हैं टाइम कितना हुआ 46 मिनट्स पास 8। आप सभी ने ट्यून इन किया है Like a Gold Radio in London and Like a Radio in Greater Manchester. This is the evening show with Ashwini. Monday से Friday रहता है आपका मेरा साथ शाम 7 से 10 बजे तक. एक तो first of all I want to say this to all of you. एक तो आप लोग बड़े sweet हो, दूसरा बड़े attentive हो. मतलब मैंने अगर कुछ कहा तो उसके ऊपर आप लोगों के फटाफट से जवाब आना शुरू हो जाते हैं. आप में से कितने लोग कहते हैं कि हमने तो टीवी देखना छोड़ दिया, हम लोग शाम में जो है तुम्हारा शो सुनते हैं और बड़े खुश होते हुए मुस्कुराते हुए हम गीतों को एंजॉय करते हैं. यही तो इम्पोर्टेंट है ना. दिन भर की थकावट जो है गीत संगीत के साथ में जब वो मिटे तो कितना सुंदर एहसास होता है. नेक्स्ट दो ट्रैक्स आपके लिए लेके आई हूँ मैं. बड़े खूबसूरत ट्रैक है वक्त फिल्म से महेंद्र कपूर की आवाज में एन आशा भोसले जी ने उनका साथ दिया है दिन है बहार के. एंड द लास्ट ट्रैक ऑफ दिस आवर विल बी मुकेश जी की आवाज में आशिक फिल्म विच वॉज रिलीज इन 1962 मैं आशिक हूँ बहारों का. इतने सुंदर ट्रैक्स और इतनी बढ़िया बढ़िया आवाजें जब सुनते हैं और वेरिएशन कितनी है सुनने में. जी हाँ, तो हमारे कुछ लेट कमर्स अभी भी आए हैं और गुड इवनिंग अश्विनी कह रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल आइए आपका स्वागत है. हुजूर आते आते बहुत देर कर दी. चित्रार का गीत था ना, याद आ गया ना अभी. नेक्स्ट आवर में और भी मस्ती मजा होने वाला है. आज गजल सुनाऊंगी या कवाली जरूर लिख के बताइएगा.
1: Radio Greater Manchester on 963 AM and 1377 AM.

0: on the evening show.
1: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
2: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
1: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
2: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
1: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
2: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
1: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
3: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
4: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल.
5: यू मीन सॉफ्टॉल ट्रेवल?
4: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर.
5: एक बार आजमाइए जरूर सॉफ्टॉल ट्रेवल.
4: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
5: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए.
6: कॉल सॉफ्टॉल ट्रेवल 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक ऑन 0161 250 1250. दैट्स 0161 250 1250.
7: Pepe's Piri Piri is turning up the heat in Bolton, with grills fired up and ready to serve you flame-grilled Piri Piri favourites. Derby Street in Bolton, Pepe's Piri Piri, definitely worth a visit.
8: ZTV HD पर देखिए साहस और जज्बे की नई कहानी
9: जगदात्री,
8: जिसमें माँ गौरी की सरलता बसती है.
9: माला ले आना. लाया जी.
8: वो वक्त आने पर महिषासुर मर्दिनी भी बन जाती है.
10: टीम, गेट रेडी फॉर द एक्शन.
8: जिसके शांत स्वभाव में भी छिपा हो शेरनी का रूप, वो है जगधात्री. देखिए रोज रात 8:30 ZTV HD और Z5 पर. अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जन मीडिया 809, BT 394.
11: ये है लाइका गोल्ड.

0: मिला लेंगे गलियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। इट्स 9:16. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। उदित नारायण की आवाज में राजा हिंदुस्तानी से आए हो मेरी जिंदगी में, क्या बात है, बहुत रिफ्रेशिंग लगता है ये गाना मुझे, ना जाने क्यों। सेकेंड इज आज रपट जाए तो किशोर कुमार एंड आशा भोसले की आवाज में नमक हलाल से। अच्छा इस गीत को लेकर ना, ये गीत मुझे बड़ा पसंद था, एक तो स्मिता पाटिल और अमिताभ बच्चन, व्हाट अ फैंटास्टिक कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टर्स। एंड मेरी आई को ये गाना बिल्कुल पसंद नहीं था, मेरी मम्मी को, और मुझे ये गाना बड़ा पसंद था। तो उस पर ना हम लोगों की थोड़ी एक दो लड़ाई झगड़ा होता था, नॉट लड़ाई झगड़ा ऐसे कुछ झगड़ा, बट ऑब्वियसली जब आपके फेवरेट सिंगर्स होते हैं तो आप उनके बिहाफ पे इधर रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ये कहने में जुट जाते हैं कि ये जो सिंगर है ये कितनी प्यारी और कितनी वर्सटाइल सिंगर है। विथ मी आई एम अ बिग बिग फैन ऑफ आशा भोसले एंड माई आई वॉज अ बिग फैन ऑफ लता मंगेशकर। क्या आपके घर में भी ऐसे होता है कि आप लोग सिंगर्स को लेके इतना डिस्कशंस करते हैं?
1: Ashwini, brightening up your weeknights. Leica Radio. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: For £1 in British sterling, you can get up to 127.30 Indian rupees. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win £75 voucher every day when you send over £1,000 and 1 gram of gold every week when you're sending over £2,000. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: The Evening Show with Ashwini.

0: to Manchester. Feel Good Track is brought to you by the Leica Radio mobile app. Download it from iOS and Android devices.
1: This is Leica Radio.
0: Greater Manchester.
1: Leica Radio.
2: आर्टिस्ट ऑफ द वीक में किशोर कुमार की आवाज में आपने जॉनी मेरा नाम इस फिल्म से सुना, ये फैंटास्टिक ट्रैक। इस गाने का मुझे एक्चुअली फैसिनेशन क्या लगता है, उसमें कितनी सारी खिड़कियां बताई है ना, देवानंद एंड हेमा मालिनी पे ये गीत फिल्माया गया था, एक खिड़की दो खिड़की। मुझे तो लगता है अगली बार कभी ऐसे हो जाए ना, अच्छा आप लोग जितने लोग अभी फिलहाल ये सुन रहे होंगे, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, ये वाला जो गीत है ना, इसमें कितनी खिड़कियां दिखाई गई हैं। आप और मैं मिलके ये टास्क लेते हैं, ठीक है, जब हमें ध्यान में आए कि कितनी खिड़कियां हैं टोटली। अब पूरे सप्ताह भर आप और हम लोग मिलते रहते हैं, तो मुझे जरूर बताइएगा, कल शाम में अगर बता सकते हैं तो बता दीजिएगा कि कितनी खिड़कियां इसमें हैं। नेक्स्ट इज टूडेज गजल। मंडे है भाई, आज कवाली कैसे आ सकती है, आज तो गजल आएगी है ना। सो आज गुलाम अली जी की आवाज में निकाह फिल्म से सुना रही हूँ आप सभी को ये गजल।

0: Feel Good Track was brought to you by LaikaRadio.com. We're live across Greater Manchester and online via the Laika Radio app and website on LaikaRadio.com. Listen live or listen back.
1: This is Laika Radio.
0: This is the Laika Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: आप हो का वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर.

0: व्हाट अ लवली ट्रैक, लता मंगेशकर की आवाज में गाइड फिल्म सुनाया आप सभी को ये गीत। टिक टिक करते हुए घड़ी अब कुछ कह रही है ना ना, रुक में जरा हो जाए और कुछ, उसके बाद में एक फाइनल टाइम चेक करते हैं।
1: दिस इज अश्विनी इन फॉर अनीसा नज़ीर ऑन द इवनिंग शो।
2: Planning your wedding? Then you can't miss the Asiana Wedding Show on Sunday, July the 5th at the Park Hall Resort and Spa in Preston, Lancashire.
3: Brought to you by Asiana in association with ZTV and Leica Radio. Discover the top wedding specialists and service providers you need for your dream wedding in one place.
2: Register for free tickets now at asiana.tv/park-hall-show.
3: For stands and sponsorships, call 07

0: purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
1: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
2: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
1: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
2: And you didn't pay those massive roaming charges?
1: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
0: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
3: 6 days to go. Atif Aslam brings his biggest hits live to the O2 on the 14th of June. Grab your tickets at AXS. Exclusive partnership, Leica Radio.
4: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
5: It was just another day, a familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend, and he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
4: This is Leica Radio Greater Manchester. Send us your feedback on our programs and presenters by simply emailing info@leicaradio.com. That's info@leicaradio.com. Leica Radio Greater Manchester is the new name for Asian Sound Radio, giving the northwest of England a refreshing Asian sound. This is Leica Radio Greater Manchester. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
6: For £1, you'll get 127.72 Indian rupee, 371.57 Pakistani rupee, 449.39 Sri Lankan rupee, 163.64 Bangladeshi taka, 83.38 Afghani.
1: Leica Radio.
4: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
1: Leica Radio.
4: The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
6: Gold is currently trading at £104.44 per gram.
4: Gold Rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com.
6: मिला लेंगे एक बार घड़ियां देखते हैं टाइम कितना हुआ है इट्स 45 मिनट्स पास्ट 9 आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी मंडे से फ्राइडे रहता है आपका और मेरा साथ शाम 7 से 10 बजे तक 3 घंटे मस्ती मजाक गपशप इंटरेक्शन सीरियसली अब बहुत बहुत मजा आता है मुझे आप सबके साथ में यहाँ पे एक तो मेरी असाइनमेंट्स क्वेश्चन आंसर सेशन आपके हमारे जो चलते हैं मस्ती मजा होता है आप अपनी दिल की बातें सुनाते हैं कुछ अच्छा हुआ है वो बताते हैं कुछ बुरा हुआ वो बताते हैं कुछ शेयर करना है वो बताते हैं ये जो विश्वास आप लोग सब मुझ पर दिखाते हैं ना तो आपकी और हमारी ये दोस्ती बड़ी लंबी चलने वाली है ना तो यस आज बेस्ट फ्रेंड डे है अगर आपके पास बेस्ट फ्रेंड है तो उसे जरूर विश कीजिए और बेस्ट फ्रेंड थी था और आप उसके कॉन्टेक्ट में नहीं थे तो उठाइए फोन घुमाइए फोन और अपने उस दोस्त से फिर से कनेक्ट कीजिए बहुत बहुत प्यारा रिश्ता होता है ये और हमेशा की तरह यही बात कि भाई प्यार तो प्यार लो प्यार जिंदगी में बहुत जरूरी है पावर तो किसी को बर्बाद करने के लिए चाहिए है ना और आप सब पावर का यूज पक्के में नहीं करते इतना मुझे विश्वास हो गया है अभी लाइफ इज ब्यूटिफुल उसे कॉम्प्लिकेटेड ना करें अपनी हेल्थ का खूब ख्याल रखें कल मिलेंगे टेरिफिक ट्यूजडे में आप और हम On that note, I have to say, please take care of yourself. Love you all. Now, I have to say, bye-bye.
7: Ye hai. Leica Radio.
8: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.
0: Star Track of the Hour, sponsored by Star Tours. Tours by Coach, Eurostar or Flight. We give you the option.

0: Network across London, Manchester, and the Midlands.
1: Back for the trip? Gifts? Passport?
2: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
3: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
2: Simzy?
3: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
4: Plans for Asia, Europe, and beyond. Search simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
5: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com. लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन.
6: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल.
7: यू मीन सफल ट्रेवल?
6: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर.
7: एक बार आजमाइए जरूर सफल ट्रेवल.
6: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
7: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए.
8: कॉल सफल ट्रेवल 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक ऑन 0161 250 1250. दैट्स 0161 250 1250.
9: जी टीवी HD पर देखिए एक नई कहानी.
10: हमारे पति हमको छोड़ दिए.
9: गंगा, जिसने अपने पति का साथ खो दिया.
10: दिल तो टूट भी गया
9: मगर अपनी बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी.
10: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार मान सकती है लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती.
9: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी गंगा माई की बेटियाँ हर शाम 7 बजे ZTV HD पर. अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394.

0: देखिए एक नई मोहब्बत की दास्तां तुमसे तुम तक हर रोज रात 8 बजे आपके अपने जी टीवी HD पर।
1: पंजाब दी बिगेस्ट ट्यून्स

0: लाइका रेडियो पंजाबी, लाइका रेडियो मोबाइल ऐप ते, laikaradio.com ते Alexa play लाइका रेडियो पंजाबी। Laika
1: Radio. The sounds of love in Manchester. Laika Radio, Greater Manchester.

0: ये है लाइका रेडियो।
1: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल
2: और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल।
3: यू मीन सफल ट्रेवल?
2: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर।
3: एक बार आजमाइए जरूर साउथ हॉल ट्रेवल।
1: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए
2: और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
3: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए।
4: कॉल साउथ हॉल ट्रेवल 24 hours a day, 7 days a week ऑन 0161 250 1250। दैट्स 0161 250 1250।
5: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad ab pehli baar London mein dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage 9 se 12 July Eventim Apollo Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner Like Radio.
6: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English, but louder.
7: Four beers, please, garçon!
6: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
8: Manchester's biggest love songs continue. Like a